सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अभी बज गई बात सुबह के 6, आज 6 बजते ही राव रेडियो दोस्त नेपाली हाजिर पड़ी वो प्रोग्राम लेके जोन हाँ आपन दे आपन देखभाल। तो सबसे पहले स्वीकार करी आपन दोस्त दीपाली के स्नेह भरल भोजपुरिया नमस्कार। दोस्त लोग रउआ तो जानत ही बानी कि ये प्रोग्राम में हम बताएनी ढेर सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। चलिए बिना देरी के लिए शुभ आरंभ के लिए अपना कार्यक्रम के, जिसमें हम बताएं सबसे पहले असरकारी कुछ घरेलू उपचार। इसे जोड़ के दर्द में 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 8 से 10 बार पी, इसे जोड़ में आराम मिले। जोड़ पर नीम के तेल के हल्का मालिश करे पर आराम मिलेला। लौकी के गुद्दा तलवा पर मले से ओकर जलन शांत होला। शरीर में कोनो भी भाग या हाथ पैर में जलन होके पर तरबूज के छिलका के सफेद भाग में कपूर और चंदन मिला के लेप करे से जलन शांत होला। सरसों के तेल में बराबर के पानी मिला के फेट ली व घमौरी पर लगाई, इसे शीघ्र आराम मिली। सिर दर्द होके पर गुनगुना पानी में अदरक व नींबू के रस व थोड़ा सा नमक मिला के पिए से आराम मिलेला। बच्चा के काली खांसी ठीक ना होके पर बांस के एक टुकड़ा के जला के ओ भस्म के शहद में मिला के 3-4 बार चाटे से बच्चा की खांसी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाई। तो दोस्त लोग ई तरह असरकारी कुछ घरेलू नुस्खा, अब चली हम बता दी कुछ लाभकारी घरेलू नुस्खा। जख्म पर पड़ल कीड़ा के नाश करे खातिर हींग पाउडर बुरक दी, दाढ़ दर्द खातिर हिंग रुई के फाहा में लपेट के दर्द के जगह रखी। शीत ज्वर में ककड़ी खा के छाछ सेवन करी। शराब के बेहोशी में ककड़ी सेवन कराई। अरहर के पत्ता के रस पिलावे से अफीम के नशा कम हो जाला। आधा छटाक अरहर दाल पानी में उबाल के ओकर पानी पिलावे से भांग के नशा कम हो जाला। अजवाइन के कुछ देर चबावे के बाद एक कप गर्म पानी पी लेवे से पेट दर्द से छुटकारा मिल जाला। नींद ना आवे के बीमारी में ज्यादा मात्रा में दही खाई या एक ग्लास पानी में दो छोटा चम्मच शहद मिला के पियल लाभप्रद होला। दाढ़ में दर्द होके तल लौंग के तेल लगावे से दर्द समाप्त होला। तेज सिर दर्द होके पर पिपरमेंट गर्म करके सिर पर लगावे से आराम मिलेला। हिचकी आवे पर तुलसी व शक्कर खा के पानी पिए से लाभ होला। मुंह में छाला होके पर नारियल खाए से छाला शीघ्र ठीक हो जाला। भूख ना लागत होके तसौफ के चूर्ण में शहद मिला के दिन में दो बार एक एक चम्मच खाएं। मसूड़ा फूल जाए पर सरसों के तेल में नमक मिला के आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ा पर मसाज करे से तकलीफ खत्म हो जाला। बिना दूध व शक्कर के अदरक वाला चाय पिए से पेट दर्द ठीक होला। तो दोस्त लोग, अब हम बतावे जात पानी कुछ आसान उपाय सेहत बनावे खातिर। खान पान के गड़बड़ आदत, कसरत ना कैल और तनाव के अलावा धूम्रपान एवं शराब पिए से रक्तचाप बढ़ल, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के खतरा युवा अवस्था में ही बढ़ रहल बा। जैसे दिल के दौरा पड़े के आशंका पैदा होला, रवा जीवन शैली में बदलाव लाके ये जोखिम के कम कर सकता नहीं। जैसे में अर्जुन के पेड़ के छाल भी धमनी में अवरोध दूर करे और रक्तचाप के नियंत्रित करे में काफी उपयोगी सिद्ध भइल बा। छाल के दो तरह से लिहल जाला। एकर 5 ग्राम चूर्ण खाली पेट ली या 10 ग्राम के 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी में खाली पेट रोज सुबह ली। स्वाद खातिर मिश्री या खंड मिलावल जा सकेला। ये मिक्सचर में शहद ना मिलाई, काहे कि इसमें सैचुरेटेड फैट होला। और एक अन्य रसायन दिल के कमजोर करेला। अर्जुन के छाल से गर्मी निकलेला जबकि शक्कर से ठंडक आवेला। ये तरह दोनों के कोनो मेल नहीं खे। ये प्राकृतिक उपचार के अलावा सेहतमंद जीवन जिए खातिर नियमित परहेज से रहल, नियमित शारीरिक व्यायाम कैल और डॉक्टर के नियम पूर्वक जांच करावे के भी सलाह भी दिहल जाला। हमेशा याद रखें कि दिल के दौरा पड़ल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति होला। सीना में दर्द के शिकायत के अनदेखा ना करी और ना ही खुद से दवा उपचार ली, बल्कि हृदय के उपचार कोनो विशेषज्ञ के देखरेख में होके के चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानल जाओ खुजली के घरेलू इलाज। त्वचा में खुजली चले, दाद हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए पर खुजला खुजला के हाल बेहाल हो जाला और लोग के सामने शर्म भी आवेला। ना कोनो क्रीम या दवा लगावे के नइखी चाहत या लगावे पर भी आराम नइखे होत त घर पर ही ई चर्म रोग नाशक तेल बना के लगाई इसे ई व्याधि दूर हो जाई। जैसे में तेल बनावे के विधि ई है कि नीम के छाल चिरैता हल्दी लाल चंदन हरड़ बहेड़ा आंवला और अडूसा के पत्ता सबके समान मात्रा में ली। तिल्ली के तेल आवश्यक मात्रा में इस सब आठों द्रव के 5-6 घंटा तक पानी में भिंगा के निकाल ली और पीस के कल्क बना ली। पीठी से 4 गुना मात्रा में तिल के तेल और तिल से 4 गुना मात्रा में पानी लेके मिला के एगो बड़ा बर्तन में डाल दी और एकरा के मंद आंच पर इतना देर तक उबाली कि पानी जल जाए सिर्फ तेल बचे। ये तेल के शीशी में भर के रख ली और ये जहाँ भी खुजली चलत होके दाद होके वहाँ ये पूरा शरीर पर ये तेल के मालिश करी। ये तेल चमत्कारी प्रभाव करेला लाभ होके तक ये मालिश जारी रखी। मालिश स्नान से पहले या सोते समय करी और एकर चमत्कार देखी। दोस्त लोग अब उस समय आ गेल बा जेमे दीपाली ली है रोवसी जाए के अनुमति। तरक्की रोगा आपन सेहत के ख्याल रही खुशहाल आजमाई ई सब अचूक नुस्खा के आज सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
6: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
7: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
6: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
1: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: दरअसल क्या है कि एक तरह से वनवास पांडवों के लिए अच्छा ही था। ये उनके लिए एक मौका था कि वो खुद को इतना ताकतवर बना लें कि मौका पड़ने पर दुर्योधन को जवाब दे सके। मैंने पांडवों और कौरवों की पूरी यात्रा देखी है। मैं वो आंख हूं जो वो भी देखती है जो आप नहीं देख पाते। मैं आकाश हूं। हमारी सफलता या हमारी असफलता हमारे आत्मबल से ही तय होती है, और इसी आत्मबल की कमी के चलते पांडव एक के बाद एक समझौते करते गए। क्यों? बस कि कहीं युद्ध ना हो जाए। और धृतराष्ट्र सबको ये समझाते समझाते थक गए कि वो बेकसूर हैं।
5: आप समझकर भी कुछ नहीं समझ सकते महाराज धृतराष्ट्र। सारा संसार जानता है कि आप देख नहीं सकते, पर अब लोग ये भी समझने लगे हैं कि आप सुन भी नहीं सकते। आपके दूत आपको राजमहल के षड्यंत्रों की सारी सूचनाएं देते रहे हैं, पर आप सब कुछ सुनकर भी अनसुना करते रहे हैं महाराज। आप केवल वही बातें सुनते हैं जो दुर्योधन चाहता है कि आप सुने। क्या आपको पता नहीं है कि पांडवों को वनवास देने के बाद भी आपके पुत्र शांत नहीं बैठे हैं?
11: मुझे कुछ नहीं पता महर्षि मैत्री, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वैसा नहीं हूं जैसा आपने सोच लिया है। मैं कितनी बार कहूं कि मैं पांडवों का कल्याण चाहता हूं।
5: आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं, ये किसी से छुपा नहीं है महाराज।
11: मैं क्या करूं महर्षि, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे मन को मेरी भावनाओं को समझ सके।
5: जो आपकी अंतरात्मा में है ही नहीं, उसे कोई कैसे समझ सकता है महाराज।
11: अब मैं आपको कैसे बताऊं महर्षि, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं दुर्योधन से प्रेम करता हूं, पर उसके लिए मेरा प्रेम पांडवों के प्राणों से बढ़कर नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि दुर्योधन ने मेरी शय पर पांडवों के साथ अन्याय किया है, तो आप स्वयं उससे वार्ता कर सकते हैं, आप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं ऋषिवर।
5: ठीक है महाराज, केवल आपके कहने पर मैं ये भी प्रयास करके देखता हूं। आज्ञा दीजिए।
12: मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम वही समझना जो तुम्हारे मन में है।
13: मेरे मन में तो वही है मामा जो आपके मन में है। अब भला मैं आपसे अलग सोच भी कैसे सकता हूँ मामा।
12: अब मुझे लगने लगा है कि मेरा भांजा केवल अपने अपमान का ही प्रतिशोध नहीं लेगा, बल्कि उन कांटों को भी उखाड़ कर फेंक देगा जो जाने अनजाने में मुझे चुभते रहे हैं।
14: क्षमा करे कुमार, महर्षि मैत्रेय आपसे मिलना चाहते हैं।
12: अब थोड़ा प्रवचन भी सुन लो भांजे। ऋषि है ऋषि, ज्ञान ध्यान की बड़ी बड़ी बातें तो करेगा ना, बस तुम थोड़ा धीरज रखना।
5: अब कुछ और मत सुनाओ शकुनी, तुम दुर्योधन के मन में पहले ही बहुत विष खोल चुके हो।
15: महर्षि, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मुझसे। मामा को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है।
5: आवाज ऊंची मत करो दुर्योधन, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
12: शांत शांत शांत भांजे शांत। महर्षि क्रोधित है, इनकी बातें धैर्य से सुनो।
15: ठीक है, कहिए महर्षि, अब क्या चाहते हैं ये पांडव?
5: मेरा उपहास कर रहे हो दुर्योधन?
15: नहीं महर्षि, आपका उपहास करके मुझे मिलेगा भी क्या? मेरे कहने का अर्थ केवल ये है कि यदि आप पांडवों के पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो।
5: मैं पांडव नहीं, न्याय का पक्षधर हूं दुर्योधन, और सदैव न्याय का ही पक्ष लूंगा। और इतना जान लो कि तुम पांडवों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रहे हो वो तुम पर भारी पड़ेगा। यदि तुम अपना और अपने कुल का भला चाहते हो दुर्योधन, तो ये शत्रुता भुला दो।
15: आप तो तप और साधना करें महर्षि,
13: जगत कल्याण की चिंता करें, ये सब राजनीति के दुष्चक्रों में कहां फंस रहे हैं महर्षि। विश्वास कीजिए, मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए आपका कोई भी परामर्श मेरे किसी काम नहीं आएगा।
5: ठीक है, जब तुम तय कर चुके हो तो सुन लो दुर्योधन, तुम जीते जी पांडवों का कोई अहित नहीं कर सकोगे और तुम्हारे इस मामा शकुनी की चालें ही तुम्हें एक दिन काल के मुख तक पहुंचाएगी।
16: महर्षि, मुझे कौन काल के मुख तक पहुंचाएगा ये अभी तय नहीं हुआ, पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको अभी इसी क्षण काल के मुंह में पहुंचा दूं।
5: दुष्ट दुर्योधन, तूने एक ऋषि के सामने अपनी जंगा ठोक कर उसका अपमान किया है। मैं ऋषि मैत्रेय अपने संपूर्ण अर्जित तपोबल से तुझे शाप देता हूँ कि द्यूत सभा में हुई भीम की प्रतिज्ञा एक दिन सच होगी। युद्ध में भीम तेरी इसी जंगा को अपनी गदा से चूर चूर कर तुझे यमलोक पहुँचाएगा, यमलोक पहुँचाएगा तुझे दुर्योधन।
17: मुझे दुर्योधन का भय मत दिखाइए भैया, अभी उसने अपनी माँ का इतना दूध नहीं पिया कि वो भीम की गदा का प्रहार झेल सके। मेरे हृदय में प्रतिशोध की जो प्रचंड ज्वाला धधक रही है, उसमें केवल दुर्योधन ही नहीं उसके सारे साथी भी भस्म हो जाएंगे।
16: तुम अनीति की बातें कर रहे हो भीम।
17: तो ठीक है, मुझे ये अनीति ही शोभा देती है, घिन आती है मुझे आपकी नीति की बड़ी बड़ी बातें सुनकर। बार बार मुझे समझा कर आपने जिस तरह मेरे स्वाभिमान को लात मारी है, मुझे भय है कि कहीं मैं अपना संतुलन न खो दूं और आप पे भी।
18: शांत शांत हो जाइए भैया भीम, अब हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे।
19: क्यों क्यों नहीं करेंगे? जब तक हमारा प्रण पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे बीच ऐसी ही बातें होंगी। मुझे उनसे शांति नहीं चाहिए पार्थ, जिन्होंने मुझे भरी सभा में अपमानित किया था।
16: क्या मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया पांचाली? मैंने क्या ऐसी भूल कर दी कि मेरी पत्नी तक मुझसे घृणा करने लगी है?
5: हाँ धर्मराज, हाँ आपने ऐसी ही भूल की है, और दुख ये है कि आप अभी भी उसी नीति और धर्म की बातें कर रहे हैं जिसने आपकी पत्नी को अपमानित किया और आपसे आपके जीवन के 13 वर्ष छीन लिए।
18: ऋषिवर प्रणाम।
17: प्रणाम ऋषिवर, आप तो हस्तिनापुर गए थे, क्या हुआ वहाँ?
5: वहाँ जो हुआ उसकी चर्चा करना व्यर्थ है भीम, मैं आग में घी नहीं डालना चाहता, पर दुर्योधन से बातें करके मुझे लगा कि अब तुम्हें न्याय मांग कर नहीं छीन कर लेना होगा।
17: यही तो मैं कह रहा हूँ महर्षि।
5: ये सब केवल कहने से नहीं होगा भीम, तुम पांचों अपने अतीत को भूल चुके हो, उसे स्मरण करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी माता कुंती के संघर्ष के सामने तुम्हारा संघर्ष कुछ भी नहीं है, और वो आज भी संघर्ष कर रही है। जब से तुम जन्मे वो तब से हस्तिनापुर में तुम सबके प्राणों की रक्षा के लिए जूझती रही। उन्हें तो इतना भी समय नहीं मिला कि तुम सबको अपनी पीड़ा सुना सके। याद रहे धर्मराज, आप जिनसे न्याय की आशा कर रहे हैं उन्होंने आप सबके साथ कैसे कैसे अत्याचार किए हैं, याद रहे। याद है वो दिन जब आप अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे?
16: मैं गंगा पुत्र भीष्म आज की सभा को सूचना देना चाहता हूं कि पांडव कुमार अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, अब राज काज में उनकी भागीदारी आवश्यक है। हमें गर्व है कि पांचों पांडव न्याय प्रिय हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्येष्ठ कुमार युधिष्ठिर में राजा होने की सारी योग्यताएं हैं, इसलिए भरत वंश की परंपरा के अनुसार मैं कुमार युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूं।

0: सुन रहे हो मांझे? ये जय घोष तुम्हें खुट खुट कर मरने के लिए विवश कर देगा। एक दिन तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा देगा ये जय घोष।
1: पर मामा, मुझे भी तो पिताजी ने हस्तिनापुर के कोष का अधिकारी बनाने की घोषणा की है, तो फिर युधिष्ठिर के युवराज बन जाने से मुझ पर कौन सा संकट आ सकता है?
0: गौ, गौ पिता की गौ संतान, तुम बहुत भोले हो दुर्योधन, पर भांजे युधिष्ठिर के युवराज होने का अर्थ है तुम्हारी गर्दन पर तलवार, तलवार पर थोड़ा दबाव बड़ा और गर्दन धड़ से अलग।
1: ये क्या तलवार दबाव, ये क्या कह रहे हो मामा?
0: मैं तो बस सच बोलता हूँ भांजे, चूहा मुटी आएगा तो भी थोड़ा ही होगा, हाथी घोड़ा नहीं होगा। कोषा अधिकारी हमेशा कोषा अधिकारी ही रहता है, जबकि युवराज एक दिन राजा बन जाता है, और यदि युधिष्ठिर राजा बन गया तो जब चाहे तुम्हारे कूले पे लात मारकर तुम्हें हस्तिनापुर से बाहर फेंक सकता है।
1: अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है?
0: मुझे जो कहना था मैंने कह दिया भांजे, अब तुम सोचो। पितामह तो कभी तुम्हारा भला सोच ही नहीं सकते। जिसने तुम्हारे पिता के बारे में नहीं सोचा वो तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकता है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता श्री को उन्होंने केवल इसीलिए सिंहासन पर नहीं बिठाया क्योंकि वो अंधे थे। उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया उन्होंने, और अब देखो।
1: सही कह रहे हो मामा, पितामह ने तो कभी हमारे लिए अच्छा सोचा ही नहीं, हमेशा हम पर क्रोध किया है। मामा, मुझे तो उनकी नियत में ही खोट दिखती है।
0: तुम उनकी नियत की बात कर रहे हो भांजे, मुझे तो उनकी नस नस में खोट दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूं, लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो।
1: ये सोचने वाला काम तो आप ही कीजिए मामा, मुझे तो ये बताइए कि किसको नोचना है।
0: नोचना भी होगा और नाचना भी होगा, सब होगा। पहले मेरी बात सुनो भांजे, तुम अपने पिता श्री से मिलो, उनसे कहो कि वो पांडुओं को वारणावत में मेला देखने के लिए भेजें। बहुत बड़ा मेला लगता है वहां, बहुत बड़ा।
1: तो इससे क्या होगा?
0: तुम राजा बन जाओगे भांजे, पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा होगा, यहां तक कि पत्ता पत्ता तुम्हारे आदेश पर हिलेगा, दास दासियां सैनिक सब तुम्हारे चरण वंदना करेंगे।
1: पर अगर युवराज युधिष्ठिर हैं, तो सब मेरा आदेश क्यों मानेंगे मामा?
0: अरे रे रे, तुम सिर्फ फल खाया करो भांजे, ये पेड़ गिरने की जो बीमारी है ना, अपने मामा के लिए छोड़ दो। तुम तो बस जाओ जाओ और अपने पिता श्री से बात करनी शुरू करो, जाओ।
2: पर दुर्योधन पेड़ कहां गिन रहा था? पेड़ गिनने का जिम्मा तो धृतराष्ट्र के हिस्से में था, मतलब ये कि अगर वो दुर्योधन की बात मान लें तो खुद ही मारे जाएं, और न माने तो दुर्योधन क्या कर सकता था ये हम सभी जानते हैं।
3: पर ये कैसे हो सकता है दुर्योधन? यदि वो मुझसे प्रश्न करें कि उन्हें वारणावत क्यों भेजा जा रहा है, तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें?
1: ये सब मुझे नहीं पता पिताश्री, आप चाहे जैसे भी हो उन्हें वारणावत भेजिए, और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो उनसे कहिए कि वनवासी प्रजा एक नए युवराज के दर्शन करना चाहती है, और फिर विशाल मेला भी तो लगा है वहां।
3: मुझे धर्म संकट में

वैसे शकुनी और दुर्योधन पहले भी पांडवों को मारने की कई कोशिशें कर चुके थे। क्या है कि जब मन में दुश्मनी के बीच पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है भैया निकलना, और यहां तो शकुनी पूरी फसल बोए जा रहा था। पर गुरु, क्या कभी ये सोचे हो कि दुश्मनी केवल सामने वाले को ही नहीं हमको भी मिटा देती है? मतलब जहर उसके मुंह में जाएगा वो तो ठीक है, तुम्हारे हाथ से भी तो लगेगा ना भैया, कुछ समझे? महाभारत।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80 0 23 35 8 76 या 95 9 99 27 9 82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070 32042।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की

0: लगते देखनी है, पर कौनो जाचल हाना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम

0: स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के साथ ही गोपालगंज जिले का 54वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जन प्रतिनिधियों ने आज भी लगातार किया दौरा, प्रभावित लोगों को की गई सहायता। बांध टूटने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को किया गया निलंबित। पानी में डूबने से एक मासूम की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। और जीविका के 20 साल पूरे होने पर नीतीश संवाद का हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और गोपालगंज जिले का स्थापना दिवस धूमधाम से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से मनाया गया। गांधी जयंती के अवसर पर माई भारत द्वारा आयोजित रिफॉर्म उत्सव के तहत जिले के विभिन्न ग्राम सभाओं में माई भारत स्वयं सेवकों ने सक्रिय भागीदारी की। स्वयं सेवकों ने ग्राम सभा सदस्यों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संवाद कर सरकार के सुधारों एवं प्रमुख जन कल्याणकारी पहलों जानकारी साझा की। स्वयं सेवकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड एवं उपलब्ध लाभ के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी, ताकि नागरिक संबंधित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। ग्राम सभा के दौरान स्वयं सेवकों ने ग्रामीणों की जिज्ञासाओं को समझते हुए संबंधित योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं की जानकारी सरल एवं सहज तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर स्वच्छता ही सेवा अभियान भी चलाया गया। इसके तहत शहर में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। जिला स्काउट एवं गाइड तथा एनसीसी के बच्चों ने रैली के माध्यम से स्वच्छता एवं जन भागीदारी का संदेश दिया। रैली को मिंज स्टेडियम से उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अम्बेडकर चौक बस स्टैंड के पास पहुंची, जहां रैली श्रमदान कार्यक्रम में परिवर्तित हो गई। इस दौरान स्वच्छता कर्मियों, अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी और नगर परिषद के सभापति सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इधर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला युवा अधिकारी शशांक मित्तल की अगुवाई में गोपालगंज के माई भारत स्वयंसेवकों ने, युवा मंडल के सदस्यों ने गंडक नदी के बढ़े जलस्तर से प्रभावित गांवों में राहत एवं सामुदायिक सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। सदर प्रखंड के जगीरी टोला सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर श्रमदान एवं सेवा दान किया तथा जरूरतमंद समुदायों को सहयोग प्रदान किया। ऐसे मौके पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी सेवा संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरक मिसाल बनी। माय भारत के स्वयंसेवकों ने अपने समय और श्रम को जनसेवा के लिए समर्पित कर यह संदेश दिया कि मुश्किल समय में युवा शक्ति समाज के साथ खड़ी है। जिले के स्थापना दिवस पर जिलाधिकारी समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने गोपालगंज वासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए जिले के 54वें स्थापना दिवस पर जिले वासियों के सुख समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बाढ़ की स्थिति पर एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि इस बार गंडक में 2003, 2017, 2022 और 2024 से भी ज्यादा पानी आया, जिसके वजह से बैकुंठपुर की कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई। दो दो जगह पर बांध टूट गया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य को फिलहाल तेज किया है। डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ समेत तमाम अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आज गांधी जयंती, स्थापना दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर गोपालगंज के भी तमाम जन प्रतिनिधियों ने गोपालगंज वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज जन प्रतिनिधियों का लगातार दूसरे और तीसरे दिन भी दौरा जारी रहा। अलग अलग तरीकों से जन प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सेवा की, उन्हें मदद पहुंचाया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम और तमाम पदाधिकारी गण भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता में लगे रहे। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बंजरिया, डुमरिया, गंभारी इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना, कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर राहत व्यवस्था की भी जानकारी ली, फसल क्षति के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर वार्ता की, बांध को काटे जाने की ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च स्तरीय जांच का उन्होंने भरोसा दिया और बांध काटने वाले दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की बात कही। दरअसल ग्रामीणों में ऐसा आक्रोश है कि बांध को काटा गया है और लोगों ने इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से की, तो उन्होंने तुरंत सम्राट चौधरी से फोन पर बात की और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत एवं बचाव का कार्य संचालित किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने गुरुवार की रात्रि में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों के बीच राहत सामग्री का वितरण कराया। शीतलपुर से पकहां बहरामपुर तटबंध क्षेत्र में 1500 पैकेट राहत सामग्री और 1200 प्लास्टिक शीट का वितरण किया गया। उप विकास आयुक्त ने प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन की सतत निगरानी और मुस्तैदी से प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इधर जादोपुर थाना क्षेत्र के खैरटिया रामनगर गांव में एक 10 साल का छात्र पानी में डूबकर मर गया। बताया जा रहा है कि बांध के पास नहाने के दौरान मासूम की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि परिजन डूबने के बाद तुरंत स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चे को पानी से निकालकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृत छात्र खैरटिया रामनगर के विनोद राम का 10 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और इसमें आगे की जांच पड़ताल की जा रही है तथा परिजनों को आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। इधर बाढ़ प्रभावित इलाकों में देर रात तक डीएम एसपी ने भी लगातार दौरा किया है, तटबंधों का जायजा लिया, तटबंधों पर सीपेज और रैट होल के स्थिति की जांच कर संवेदनशील स्थलों पर तत्काल मरम्मती का कार्य तेज कराया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर रहकर भी अधिकारियों को मरम्मती कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। बरौली के विधायक मंजीत सिंह ने भी इलाके का दौरा किया, जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान मंजीत सिंह ने कहा कि नेपाल में हुई भारी बारिश के वजह से गंडक नदी का जो जलस्तर बढ़ा है और बढ़ने के वजह से बांधों पर दबाव पड़ा, जिसके वजह से बांध टूटा है। हालांकि ग्रामीणों के बांध काटे जाने पर उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच कर इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। जीविका के 20 साल पूरे होने पर आज गोपालगंज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जदयू पार्टी के तरफ से जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित नीतीश संवाद में आज जदयू पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें जदयू के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार, गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही और तमाम पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और भारी संख्या में जीविका दीदियां भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। इस दौरान जीविका के 20 साल पूरे होने पर उत्सव के तरह इस आयोजन को मनाया गया। सिरीपुर थाना की पुलिस ने आज 306 लीटर शराब बरामद करते हुए एक कार को जब्त किया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मिश्र बतराहा स्थित तीन मुहानी सड़क के पास वाहन जांच करते हुए इस गाड़ी को पकड़ा। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस को देखकर तस्कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हुंडई अक्सेंट कार को जब्त कर कार के मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर लिया है और कार तथा शराब को जब्त कर अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी नरेश यादव पिता झंगरू यादव साकिन मधु सरिया थाना माझागढ़ जिला गोपालगंज का निवासी है। पुलिस ने पहले से इस पर मामला दर्ज किया था, अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर माधोपुर थाना की पुलिस ने पूर्व के चोरी कांड में दो अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इन दोनों अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी छोटे लाल प्रसाद पिता हरि बालक प्रसाद साकिन सरेया नरेंद्र थाना माधोपुर का निवासी है और दूसरा विशाल कुमार पिता मनोज शाह साकिन शेर बिशुनपुरा थाना फुलवरिया का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अब इन पर विधिक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इन पर चोरी का आरोप है और चोरी की सामग्री भी इन लोगों के पास से पुलिस ने बरामद की है। कृषि अनुसंधान परिसर पटना में स्वच्छता दिवस के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के प्रथम चरण का समापन हुआ। इस दौरान सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, जय जवान जय किसान के प्रणेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तथा स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान प्रथम चरण के समापन पर स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत की भावना के साथ विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास के द्वारा संस्थान में कार्यरत सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया गया। आज जीविका के 20 साल बेमिसाल नीतीश संवाद कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जदयू रीता देवी ने किया, जबकि मंच संचालन प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ निरुपमा सिंह ने किया। जीविका समूह की दीदियों और जदयू महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुनील कुमार ने कहा कि आज बिहार में महिलाओं के जीवन में जो प्रगति आई है उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। भोरे थाना की पुलिस ने स्मैक जैसे मादक पदार्थों के बिक्री की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5.41 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर भोरे ब्लॉक के मेन गेट के पास कुल्फी की दुकान पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां दो लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी आलोक कुमार सिंह पिता दिलीप कुमार सिंह साकिन भीखा छापर एवं राजीव कुमार पिता मुन्ना राम साकिन हरिहरपुर दोनों थाना भोरे जिला गोपालगंज के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने स्मैक एवं गांजा का कारोबार करने तथा भोरे एवं आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर इसकी बिक्री करने की बात स्वीकार की। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विधिवत तलाशी लेने पर आलोक कुमार सिंह के जीन्स पैंट के दाहिने पॉकेट से एक सफेद प्लास्टिक में रखी 14 पुड़िया एवं एक खुला पैकेट में स्मैक जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया, जिसका कागज सहित वजन 2.55 ग्राम बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के साथ ही गोपालगंज जिले का 54वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जन प्रतिनिधियों ने आज भी लगातार किया दौरा, प्रभावित लोगों को की गई सहायता। बांध टूटने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को किया गया निलंबित। पानी में डूबने से एक मासूम की हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। और जीविका के 20 साल पूरे होने पर नीतीश संवाद का हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
11: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
11: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
11: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
11: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-8869-73।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
14: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
14: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
14: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
15: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे दिव्या। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस की। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस विषय को गहराई में समझने के लिए हमारे साथ है सेहतिया भैया। भैया, हेपेटाइटिस क्या होता है और विश्व हेपेटाइटिस दिवस में क्या मनाया जाता है?
16: देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन आ जाना। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, इससे लीवर खराब हो सकता है और कैंसर तक हो सकता है। इसलिए हर साल 28 जुलाई को लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन, यानी चलिए इसे समझते हैं और आसान बनाते हैं। मतलब इस बीमारी में जो रुकावटें हैं, जैसे टेस्ट ना होना, इलाज महंगा होना या जानकारी की कमी, उन्हें दूर करना बेहद जरूरी है।
15: हेपेटाइटिस से दुनिया और भारत में कितने लोग प्रभावित हैं?
16: हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है। दुनिया में करीब 35 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी या सी बीमारी के साथ जी रहे हैं। भारत की बात करें तो करीब 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और 6 से 12 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी जब बीमार होती है तो इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं, पैसों पर, कामकाज पर और पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है।
15: सेहतिया भैया, हेपेटाइटिस कितने तरह का होता है? क्या हर तरह का हेपेटाइटिस एक जैसा होता है या कोई ज्यादा खतरनाक भी होता है?
16: हेपेटाइटिस 5 तरह के वायरस से होता है, ए, बी, सी, डी और ई। ये सब एक जैसे नहीं होते। हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादातर गंदा खाना या पानी पीने से फैलता है। ये थोड़े हल्के माने जाते हैं और ज्यादातर लोग उचित इलाज, आराम और साफ सफाई से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये खून के जरिए फैलते हैं, जैसे संक्रमित सुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बिना जांच के टैटू वगैरह से। अगर समय पर इलाज न हो तो ये लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लीवर सिरोसिस या कैंसर तक का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस डी थोड़ा अलग है, ये अकेले नहीं होता, ये सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी है। जब बी के साथ डी भी हो जाए तो बीमारी और भी गंभीर हो जाती है।
15: सेहतिया भैया, आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई खाने पीने से फैलता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है?
16: हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादातर संक्रमित खाना और पानी पीने से फैलता है। कई बार लोग बाहर का खुला खाना खाते हैं या गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं तो ये वायरस पेट में चला जाता है और लीवर में सूजन कर देता है। इन दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं, जैसे कि शुरू में थकान लगना, भूख कम हो जाना, हल्का बुखार, पेट में दर्द या भारीपन, उल्टी जैसा मन करना, पेशाब गहरा हो जाना और सबसे खास लक्षण है पीलिया, यानी आँखें और चमड़ी पीली पड़ जाना। अब बात करें बचाव की तो सबसे पहला उपाय है साफ सफाई। खाने से पहले और शौच के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना, साफ और उबला हुआ पानी पीना, घर का बना ताजा खाना खाना और खुले में कटे फल सब्जियां नहीं खाना चाहिए। अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिले और जांच कराएं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा खतरनाक हैं। ये खून के जरिए इंजेक्शन या संक्रमित सुई से फैलते हैं। ये लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं और धीरे धीरे लीवर को खराब कर सकते हैं। इससे सिरोसिस या लीवर कैंसर तक हो सकता है। हेपेटाइटिस डी तो सिर्फ उसी को होता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी है, मतलब ये अकेले नहीं आता। देखिए, हेपेटाइटिस डी अपने आप नहीं होता, ये सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो। इसीलिए हेपेटाइटिस बी से बचाव ही हेपेटाइटिस डी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। ये बात है मेरे मौसी के बेटे रमन की। बहुत सीधा साधा लड़का था, जब कॉलेज में था तो एक बार बीमार पड़ा और एक लोकल क्लिनिक से खून चढ़वाया, लेकिन शायद खून की सही जांच नहीं हुई थी। कुछ ही महीनों बाद रमन को हल्का बुखार, थकावट और कभी कभी पेट में भारीपन महसूस होने लगा। शुरुआत में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें और स्किन पीली पड़ने लगी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जांच में पता चला रमन को पहले से ही हेपेटाइटिस बी था और अब हेपेटाइटिस डी हो गया है।
17: तो क्या ये डबल वायरस और ज्यादा खतरनाक हो सकता है?
16: बिल्कुल भाई, डॉक्टर साहब ने बताया कि हेपेटाइटिस डी लीवर पर और तेज हमले करता है। अगर इलाज में देरी हो जाए तो लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि रमन की बीमारी वक्त रहते पकड़ में आ गई। डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया, खास दवाइयों का कोर्स चलाया। रमन ने दवा समय पर ली, आराम किया और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा।
17: तो फिर वो ठीक हो गया?
16: हाँ, आज रमन एकदम स्वस्थ है और मजबूती से जिंदगी जी रहा है।
18: तो दोस्तों, हेपेटाइटिस डी का खतरा तभी होता है जब पहले से हेपेटाइटिस बी हो। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाएं। और हाँ, खून चढ़ाने या इंजेक्शन लगवाने से पहले साफ सफाई और जांच की पुष्टि जरूर करें।
17: सेहतिया भैया, हेपेटाइटिस सी के लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है?
16: आरजी, हेपेटाइटिस सी भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर पर असर डालता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके शुरुआती लक्षण नजर ही नहीं आते। अब मैं आपको ट्रक चालक कालीचरण की आप बीती सुनाता हूँ। सालों साल वो सड़क के किनारे कभी होटल तो कभी ढाबों पर खाना खाता रहा। जब तबीयत बिगड़ती तो मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले लेता था। एक बार उसे कमर में दर्द हुआ तो लोकल क्लिनिक से इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन वहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ महीनों बाद उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी।
17: तो कालीचरण को क्या लक्षण दिखने लगे?
16: बस यही तो परेशानी है, हेपेटाइटिस सी के लक्षण धीरे धीरे आते हैं। कालीचरण को हर वक्त थकान महसूस होती थी, काम में मन नहीं लगता था, हल्का बुखार रहता था और धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये गंभीर बीमारी के संकेत हैं। फिर एक दिन कालीचरण की हालत बहुत बिगड़ गई, उसका पेट फूला हुआ सर लगने लगा, कमजोरी बहुत बढ़ गई। आखिरकार उसे शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां जब खून की जांच हुई तो पता चला कालीचरण को हेपेटाइटिस सी है। डॉक्टर ने बताया कि संक्रमित सुई या खून के जरिए उसे ये बीमारी हुई है।
17: फिर उसका इलाज कैसे हुआ?
16: डॉक्टर साहब ने कालीचरण को समय पर दवाइयाँ लेने, पूरा कोर्स खत्म करने और खाने पीने में सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है, बस धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। कालीचरण ने करीब 6 महीने तक दवा ली, परहेज किया, फिर पूरी तरह ठीक हो गया और आज वो फिर से ट्रक चला रहा है।
17: सेहतिया भैया, सरकार की तरफ से इस बीमारी को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?
16: सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए काफी मेहनत कर रही है। साल 2018 में भारत सरकार ने एक खास योजना नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू की थी। इस योजना का मकसद है कि 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूरी तरह खत्म किया जाए और बाकी वायरल हेपेटाइटिस का बोझ भी कम किया जाए। इस योजना के तहत सरकार कई काम कर रही है। लोगों को बीमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है, साफ सफाई और सुरक्षित इंजेक्शन देने की आदतें बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि लोग हेपेटाइटिस के लक्षण पहचान सकें और समय पर इलाज करा सकें। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहां डॉक्टरों और नर्सों की खास ट्रेनिंग दी जाती है कि हेपेटाइटिस के मरीजों का सही इलाज कैसे किया जाए। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधा है ताकि अगर मां को हेपेटाइटिस हो तो बच्चों में ना फैले। ये चीजें दूसरी योजनाओं जैसे हेल्थ मिशन और स्वच्छ जल सफाई कार्यक्रम से भी जोड़ी गई हैं। कोशिश है कि साथ मिलकर बीमारी को खत्म किया जा सके।
17: सेहतिया भैया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? क्या वहाँ हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज होता है?
16: आयुष्मान आरोग्य मंदिर दरअसल गांव और मोहल्ले के पास बने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, जहां लोग सबसे पहले इलाज के लिए आते हैं। ये केंद्र सिर्फ मामूली बुखार या खांसी के लिए ही नहीं है, बल्कि हेपेटाइटिस जैसे गंभीर बीमारियों के पहचान और इलाज में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर हेपेटाइटिस की जाँच मुफ्त में होती है ताकि बीमारी को जल्दी पहचान यहाँ पर हेपेटाइटिस की जांच मुफ्त में होती है ताकि बीमारी की जल्दी पहचान हो सके। अगर किसी को लक्षण नजर आते हैं या खतरा होता है तो फौरन स्क्रीनिंग की जाती है, और अगर कोई मरीज पॉजिटिव निकलता है तो उसे जरूरी दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। सबसे अच्छी बात है, इन केंद्रों पर इलाज के बाद भी मरीजों की लगातार निगरानी की जाती है। ध्यान रखा जाता है कि मरीज दवा समय पर ले और बीमारी दोबारा न बढ़े। इसके अलावा वहाँ योग, काउंसलिंग और सेहत से जुड़ी दूसरी गतिविधियाँ भी कराई जाती हैं, जिससे लोग न सिर्फ बीमारियों से बचें बल्कि पूरी तरह तंदुरुस्त रहें।
19: दोस्तों, अब तक हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई जैसी बीमारियों की बात कर रहे थे जो वायरस से फैलती है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनका वायरस से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी लीवर बीमार हो जाता है। सेहतिया भैया, जरा समझाइए ना।
16: अरे बिल्कुल, देखिए, जब कोई लंबे समय तक शराब पीता है या कुछ ऐसी दवाई लेता है जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है, तो लीवर में सूजन आ जाती है। इसे गैर वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं।
19: भैया, आप तो समझ में आ गया, वायरस हो या शराब या दवाइयाँ, लीवर तो बेचारा हर हाल में झेलता है।
16: सही कहा, और सबसे बड़ी बात यह है अगर सही समय पर जांच हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है।
19: तो भैया, अगर कोई ज्यादा शराब पी रहा है या रोज दवा खा रहा है, और अगर उसे थकान, भूख कम लगना या पीलापन जैसा कुछ दिखे, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
16: एकदम जाना चाहिए। लीवर हमारे शरीर का जरूरी हिस्सा है, वो सही रहेगा तभी बाकी चीजें भी ठीक चलेंगी।
19: तो साथियों, आज की एक बात गांठ बांध लीजिए कि हेपेटाइटिस सिर्फ वायरस से नहीं होता, हमारी आदतें भी लीवर को बीमार बना सकती हैं। तो सावधान रहिए, और जरा भी शक हो तो डॉक्टर से जरूर मिलिए।
16: और अच्छी बात यह है कि अब इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, सरकार भी पूरी ताकत से हमारे साथ है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में हेपेटाइटिस की जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती है।
19: हाँ भैया, और कई सरकारी अस्पतालों में तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन, ब्लड टेस्ट और जागरूकता कैंप भी चल रहे हैं, ताकि हर आदमी को सही जानकारी मिले और समय रहते इलाज हो सके।
16: और देखिए, बच्चों के जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा है, साथ में जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं भी मिलती हैं, ताकि किसी को भी पैसों की वजह से इलाज न छोड़नी पड़े।
19: ब्लड बैंक और अस्पतालों में खून की सख्ती से जांच होती है ताकि संक्रमण आगे ना फैले, साथ ही मुफ्त काउंसलिंग और हेल्थ सलाह भी दी जाती है।
18: दोस्तों, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए साफ सफाई रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, और अगर कोई लक्षण दिखे तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिले। सरकार भी आपके साथ खड़ी है, जांच, इलाज और दवाई अब आसानी से निशुल्क उपलब्ध है।
19: सेहतिया भैया, तो क्या हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से हम पूरी तरह बच सकते हैं?
16: बिल्कुल बच सकते हैं भाई, बस जरूरत है सही जानकारी, समय पर जांच और इलाज की। देखिए, हेपेटाइटिस अब भी हमारे देश और दुनिया के लिए एक बड़ी बीमारी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि सरकार की योजनाएं और लोगों की जागरूकता धीरे धीरे इसे हराने में मदद कर रही है, जैसे कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये दोनों मिलकर गांव-गांव तक इलाज, जांच और जरूरी दवाएं पहुंचा रहे हैं।
19: दोस्तों, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बहुत अहम बात याद दिलाती है कि हमें इस बीमारी के बारे में चुप रहने की जरूरत नहीं, बल्कि खुलकर बात करनी चाहिए। कई लोग आज भी हेपेटाइटिस को लेकर शर्माते हैं, डरते हैं या इलाज टालते हैं, लेकिन इसमें बीमारी और बढ़ जाती है। अगर हम समय पर जानकारी लें, जांच कराएं और इलाज शुरू करें, तो ये बीमारी पूरी तरह से काबू में लाई जा सकती है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, मुफ्त जांच, इलाज और दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। अब जरूरत है कि हम अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर जागरूक बने और दूसरों को भी समझाएं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो 2030 तक हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए, आज के एपिसोड को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में एक और जरूरी स्वास्थ्य विषय के साथ। याद रखिए कि अगर सेहत सही रहेगी तभी तो जिंदगी में असली लाभ मिलेगा। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
20: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
21: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
20: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
21: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
22: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
23: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
23: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
22: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
23: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
23: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
23: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6550।
24: ठक ठक
25: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
26: अच्छा मिला ही नहीं।
25: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
26: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
25: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
26: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
6: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
5: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: हमारा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
8: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
9: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
8: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
9: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
8: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
9: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
8: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-86165
9: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
10: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
10: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: आठ महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। गलियारे के तीसरे चरण संयुक्त मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
4: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
5: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
4: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शाही खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
10: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
9: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
10: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
9: कहाँ?
10: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
11: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
12: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
11: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
12: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
11: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
12: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80035786 या 95997-27982।
13: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
12: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
13: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
12: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
13: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
10: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
9: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
10: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
9: कहाँ?
10: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
0: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
2: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
2: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर NH 27 साधु चौक गोपालगंज
2: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंडक नदी में उफान से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में सुधार नहीं, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य। प्रदेश में 50 लाख से अधिक जीविका दीदियों को लखपति बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान करेगा शुरू। राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी दाखिले के नियम तय, नेट उत्तीर्ण वर्ष में ही मिलेगा दाखिला चक्र का लाभ। और श्रद्धा और आस्था के साथ आज मनाया जा रहा है जीतिया पर्व। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए कर रही हैं निर्जला उपवास। अब समाचार विस्तार से। गंडक और गंगा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किए जाने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। विभिन्न स्थानों पर तटबंध और रिंग बांध टूटने के कारण सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। लोगों ने ऊंचे स्थानों और राहत शिविरों में शरण ले रखी है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में भी कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सारण के पानापुर में सरोजा भगवानपुर के पास गंडक का बांध टूटने से 6 गांव में पानी फैल गया है। तरैया के राजधानी गांव में भी लगभग 30 फीट में रिंग बांध टूट गया। जिले के परशुराम में क्षतिग्रस्त तटबंध के आसपास खड़े लोगों के बीच राहत सामग्री गिराने के दौरान भारी पैकेट एक व्यक्ति के ऊपर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में रिंग बांध टूटने से 300 घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गंडक के बढ़े जलस्तर से वैशाली जिले के दियारा इलाके में भी पानी पहुंच गया है। पश्चिम चंपारण जिले में पुजहा पटजिरवा मुख्य मार्ग पर एक पुलिया चंद्रावत नदी के दबाव से टूट गई, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 27 टीमें लगी हुई हैं। राहत कार्यों में वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। सारण के पानापुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री वितरित की गई। इसके अलावा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत सामग्री लगातार गिराई जा रही है। सामुदायिक किचन और राहत शिविरों में भी लोगों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नेपाल में बारिश में कमी होने के बाद वाल्मीकि नगर बराज से कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे गंडक नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। कई स्थानों पर स्लुइस गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही तटबंधों पर दबाव कम होने से प्रभावित क्षेत्रों में राहत की उम्मीद जगी है। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में कमी दर्ज किए जाने से कई इलाकों में पानी का दबाव कम हुआ है। इससे लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: बराज से डिस्चार्ज कम होने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में काफी कमी आई है। डुमरिया घाट में पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के सीतलपुर में जमींदारी बांध टूटने के बाद 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया था, जो अब कम हो रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री बांटी। सीतलपुर में पानी कम होने के बाद बांध को दोबारा बनाने का काम शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि तटबंधों की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं जल संसाधन विभाग के अभियंता तटबंधों पर लगातार तैनात।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि बाढ़ की त्रासदी समाप्त होने के बाद स्थिति का पूरी तरह आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

0: देखिए सरकार पूरी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है, कृषि विभाग भी पूरी तैयारी के साथ पूरी नजर है और किसी को नुकसान नहीं होगा, आपदा में उसकी प्राथमिकता रहेगी। सरकार सजगता के साथ सेवा के भाव से खड़ा।
1: पूर्वी चंपारण जिले में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ के पानी में डूबने की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें पहाड़पुर में 4 बच्चियां, बंजरिया में 3 और घोड़ासहन में 1 बच्ची की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार ये सभी जीतिया पर्व के दौरान स्नान करने के लिए गई थी। जिलाधिकारी सौरभ सुमन ने बताया कि सभी शवों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत सहायता दी गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन के तहत मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई है। इधर पटना के हाथीदह के रामटोला गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य सरकार ने प्रदेश में 50 लाख से अधिक जीविका दीदियों को लखपति बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान शुरू करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत 10 लाख महिला उद्यमियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश की 60 लाख महिलाओं को पशुपालन और उससे जुड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में दाखिले को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को पीएचडी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन 2026 के प्रावधानों के अनुरूप दाखिला लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित दाखिला प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। पीएचडी में नेट की पात्रता को लेकर कहा गया है कि जिस वर्ष अभ्यर्थी ने नेट उत्तीर्ण किया है उसे उसी वर्ष के दाखिला चक्र के लिए पात्र माना जाएगा। ये निर्देश बिहार कृषि विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे गए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने कहा है कि महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर से शुरू छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान खादी उत्पादों पर 20% तक और ग्राम उद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट दी जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए, नए श्रम कानून ने कैसे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया है।
1: पिछले 70 वर्षों में 29 अलग अलग श्रम कानूनों का एक जटिल ढांचा बन गया था। प्रत्येक कानून के लिए अलग पंजीकरण, रिटर्न, निरीक्षक और परिभाषाएं थी। इन सभी का पूरी तरह पालन करने वाले नियोक्ता के पास बाकी कार्यों के लिए बहुत कम समय बचता था। वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा समेत स्वास्थ्य से संबंधित 4 श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 को लागू हुई। उन्होंने पुरानी व्यवस्था को हटाकर एक एकीकृत ढांचे और एक समान अनुपालन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया।
2: बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। इसी सोच से 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे।
1: यह सरलीकरण विशेष रूप से छोटी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके पास बड़े संगठनों की तरह अलग अनुपालन विभाग नहीं होते और जिन्हें सीमित संसाधनों में ही इन नियमों का पालन करना पड़ता है। इन संहिताओं ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया। न्यूनतम मजदूरी हर श्रमिक का वैधानिक अधिकार बनी और पहली बार गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया। समाज के सभी वर्गों ने इन श्रम संहिताओं का स्वागत किया है और इसकी सराहना की है।
3: जी, इन्होंने ये बहुत ही स्वागतपूर्ण कदम है सरकार का और इन्होंने हर तबके के जो उद्यमी हैं उनका इन्होंने ख्याल रखा है। 20 से नीचे वालों का भी ख्याल रखा है, 20 से ऊपर वालों का भी ख्याल रख रहा है। निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है और हम लोग तो उद्यमी पहले से ही कानून मानते आए हैं और उसमें उलझने होती थी, अब लगता है कुछ न कुछ तो राहत मिलेगी।
4: विगत 3-4 दशकों में जो 44 लेबर कानून था, जिससे नियोजक और उद्यमी और कर्मचारी मजदूर बहुत परेशान होते थे, विभिन्न तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, तो अब जो सुगम और सुलभ हुआ है, मात्र 4 लेबर कानून बना है, इससे निश्चित रूप से मजदूर को, कर्मचारी को और उद्यमी नियोजक को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 2015 में लगभग 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
0: गया जी जिला आज अपना 162वां स्थापना दिवस मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि धर्म, ज्ञान और स्वतंत्रता की समृद्ध विरासत आज भी यहां कायम है।
5: धर्म, ज्ञान और स्वतंत्रता की समृद्ध विरासत गया जी का ऐतिहासिक महत्व आज भी कायम है। 3 अक्टूबर 1865 को इसे स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। उस समय गया बिहार का सबसे बड़ा जिला था। स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से गया जी के गांधी मैदान स्थित टेंट सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बिहार गीत और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: प्रदेश में आज जीतिया का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। कल नहाए खाए के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हुई। आज महिलाएं संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए निर्जला उपवास कर रही हैं। इस अवसर पर बाजारों में विशेष चहल पहल है। मिठाई, फल और पूजा सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस शुभ अवसर पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने बाढ़ से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, बाढ़ बनी विकराल, डूबने से 22 लोगों की मौत, गंडक, गंगा और बागमती समेत कई नदियां लाल निशान पार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, SIR में छूटे नामों को जोड़ने के लिए चलेगा अभियान। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पाटलिपुत्र टाउनशिप 5119 किसानों ने भेजी आपत्ति, सरकार बोली जबरन नहीं लेंगे जमीन। प्रभात खबर ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज आ सकता है फैसला। आज अखबार की सुर्खी है, पर्व के मद्देनजर दिल्ली से बिहार यूपी समेत कई राज्यों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंडक नदी में उफान से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में सुधार नहीं, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य। प्रदेश में 50 लाख से अधिक जीविका दीदियों को लखपति बनाया जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान करेगा शुरू। राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में दाखिले के नियम तय, नेट उत्तीर्ण वर्ष में ही मिलेगा दाखिले चक्र का लाभ। और श्रद्धा और आस्था के साथ आज मनाया जा रहा है जीतिया पर्व। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए कर रही हैं निर्जला उपवास। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
13: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
12: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
13: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
12: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
13: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
12: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
14: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
15: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
16: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
17: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
16: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
18: नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029294921 पर। जी हाँ, 8029294921 पर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम की तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपनी तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो, साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता न लें और इंटरनेट में जवाब सर्च न करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम का रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
19: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम।
20: नमस्कार।
19: नमस्कार, नाम बता दीजिएगा अपना।
20: अरविंद कुमार।
19: और कहाँ से हैं आप अरविंद जी?
20: चक्की होगा सर, उस जगह पर करना पड़ता है
19: जी। क्या करते हैं आप?
20: पढ़ाई तो रहे हैं, 12 से पढ़ाई की है।
19: अच्छा,
20: काम करते हैं
19: जी। आगे क्या करना है?
20: अब देखते हैं, पढ़ना ही है।
19: चलिए, तब तो ठीक है। और इससे पहले आपने कभी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
20: जी, बहुत बार किया है।
19: आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
20: मम्मी जी का नाम है चिंता देवी और पिताजी का नाम है राजेंद्र।
19: तो आप तैयार हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेलने के लिए?
20: जी जी।
19: तो अरविंद जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है
20: जी।

0: रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऐसा नहीं होगा।
0: प्योर है?
1: प्योर नहीं है, लॉक ऐसे
0: लॉक किया जाए।
1: जी लॉक करिए।
0: तो अरविंद जी आपको बता दें, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी तैयार हैं, बोलिए।
0: आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजयी विश्व तिरंगा।
1: वंदे मातरम।
0: प्योर है?
1: हाँ प्योर है।
0: लॉक किया जाए। तो अरविंद जी मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपका तीसरा प्रश्न ये है कि भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 16 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह फरवरी का है।
0: प्योर है?
1: प्योर नहीं है।
0: लॉक किया जाए।
1: जी लॉक किया।
0: तो अरविंद जी आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 12 फरवरी बिल्कुल गलत है और सही जवाब है ऑप्शन बी 13 फरवरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर से क्विज कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। जी रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं कमरान रफीक बोल रहा हूँ।
0: और कहाँ से हैं आप?
2: जस्टिस सिवान बकरे सुल्तान। कमरानी नाम है
0: जी। जी
2: रफीक मिला दीजिए।
0: हाँ
2: मैं तो बहुत पुराना लिस्टर हूँ, आपसे नहीं है।
0: जी जी
2: सोनी जी होती तो पहचान लेती।
0: हाँ हाँ
2: मैं तो 2009 से सुनता हूँ जब से स्थापना हुई है।
0: वैसे क्या करते हैं आप?
2: ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं आया हूँ फिलहाल दिल्ली में।
0: जी जी
2: मैं तैयारी करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा, कंप्यूटर सीखूंगा, यही सब करूँगा और क्या करूँगा।
0: तो तैयार हैं आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल खेलने के लिए? कमरान जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है की

0: बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कटिहार।
1: सवाल का सवाल हम समझे नहीं
0: सही। सवाल है आपसे कि बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं।
1: अच्छा।
0: आपका समय शुरू होता है अब।
1: में डाल दीजिए पटना को डालिए।
0: जी
1: पटना को डाल दीजिए।
0: प्योर है
1: जो तो लिखा है राजनीति के बारे में उतना जानते हैं पहले।
0: अच्छा जी लॉक करते हैं तब।
1: हाँ करिए पटना लॉक।
0: तो कमरान जी मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पटना बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए। तो आपसे दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है, ऑप्शन ए 4 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी।
0: श्योर है?
1: हाँ
0: लॉक करते हैं तब। तो कमरान जी मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए। तो आपका तीसरा प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी मैरी कॉम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी खरीदे।
0: प्योर है?
1: ऑप्शन सी।
0: प्योर है आप?
1: प्योर तो नहीं है।
0: लॉक किया जाए?
1: हाँ ऑप्शन सी खरीदे।
0: तो कमरान जी मैं आपको बता दी कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मैरी कॉम गलत जवाब है। सही जवाब है कि ऑप्शन बी किरण बेदी। कोई बात नहीं नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: सुनिए
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा फैंसी साड़ी लेडी सूट क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन केडिया लेन मेन रोड गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 80 29 94 921 पर। जी हाँ, 80 29 94 921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
10: हेलो, नमस्ते
0: जी। नमस्ते, रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
10: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
10: जी, नीतू बोल रहे हैं।
0: नीतू?
10: हाँ।
0: और कहाँ से हैं नीतू जी आप?
10: पिपराई।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
10: मैं पढ़ाई छोड़ दी हूँ, 10th पढ़ाई।
0: अच्छा, क्या करती हैं वैसे अभी?
10: वैसे ही अभी घर के बच्ची लोग को पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा जी,
10: काम भी करती हूँ।
0: तो आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहले कभी कॉल किया है?
10: हाँ किए।
0: अच्छा, तो तैयार है आप इस खेल को खेलने के लिए?
10: जी तैयार हूँ।
0: तो नीतू जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता स्वयंवर में किस महर्षि के साथ गए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता स्वयंवर में किस महर्षि के साथ गए थे? ऑप्शन ए है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वशिष्ठ, ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी महर्षि वशिष्ठ होगा।
0: श्योर है?
1: जी श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो नीतू जी मैं आपको बता दूं कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिए।
2: हाँ हेलो नमस्ते मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी
0: नाम क्या है आपका?
2: सुधा कुमारी।
0: सुधा?
2: जी मैम।
0: और कहाँ से हैं आप सुधा जी?
2: बता दे।
0: आपके आसपास कोई है?
2: नहीं मैम, मैं अकेली हूँ।
0: ऐसा तो लग रहा है मुझे कि कोई है।
2: नहीं नहीं,
0: अगर कोई होगा तो मैं फोन काट दूंगी।
2: नहीं मैम अकेले हूँ। बोलिए
0: किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: टेंथ पास की हूँ, 11th में हूँ।
0: अच्छा जी, तो आगे क्या करने का इरादा है?
2: अभी कुछ सोचे नहीं है।
0: चलिए फिर, तब तो ठीक ही है। इससे पहले आपने कभी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
2: जी मैम।
0: और वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: सीता का नाम, माता का नाम है श्रीमती चंद्रमती देवी, पिता का नाम है श्री सुमन माता।
0: तो आप तैयार हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल के लिए? सुधा जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी अपनी चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एको।
0: हेलो।
1: हाँ,
0: चोर है?
1: नहीं, कंफर्म तो नहीं।
0: तो मैं सुधा जी बता दूँ आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अपनी चौधरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो, कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
2: हेलो जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। हाँ जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
2: मेरा नाम सालू कुमारी है।
0: सालू कुमारी?
2: यस मैम।
0: और कहाँ से हैं सालू जी?
2: इससे भी जरूरत है।
0: क्या करती हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में है अभी?
2: नाइन्थ।
0: आगे और क्या पढ़ने का इरादा है?
2: यूपीएससी में जाना है।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो अच्छी बात है। और तो इससे पहले आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कभी कॉल किया है?
2: मैंने एक बार 10 प्रश्नों का पूरा सही सही उत्तर भी दिया था।
0: अच्छा, ये बात तो चलिए ठीक है। और वैसे आपकी मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: हाँ, मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम वरेंद्र कुमार प्रसाद।
0: तो तैयार है आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल खेलने के लिए?
2: यस मैम।
0: तो चालू जी, आपके आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम तो ऑप्शन सी कीजिए, 13 फरवरी।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर नहीं है।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी, मैं आपको बता दूं, आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: हिंदी।
0: क्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी, आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हिंदी बिल्कुल गलत है और सही जवाब है ऑप्शन सी उर्दू। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
3: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिधवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
3: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रंजीम 90.4 अमरजैट पर।
11: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 80 029 94 921 पर। जी हाँ, 80 029 94 921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: जी मैडम
12: जी, नाम बता दीजिएगा।
13: रंजीत कुमार
12: जी। रंजीत जी, कहाँ से हैं आप?
13: बड़े पटनावादा।
12: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
13: पढ़ाई करते हैं।
12: किस क्लास में हैं अभी?
13: अभी तो ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं।
12: अच्छा जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आज पहली बार कॉल किए हैं?
13: पहले एक दो बार विनर भी बन गए हैं।
12: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
13: मेरे पिता का नाम श्री जग महतो और मेरी माता का नाम श्रीमती इंदु देवी।
12: जी तो तैयार है इसको खेलने के लिए?
13: जी मैडम।
12: ओके तो रंजीत जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बोधि वृक्ष।
1: ऑप्शन सी बोधि वृक्ष।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: और आपको बता दें कि आप पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बोधि वृक्ष बिल्कुल सही है।
1: जी मैडम।
0: तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: तो आपका आपसे दूसरा प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिता जी का क्या नाम है? बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी सपनी चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी सपनी चौधरी।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो आपको बता दूं आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन डी सपनी चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके, तो आपका आपसे तीसरा प्रश्न है कि विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए बीचों बीच में, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ध्रुव पर।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो मैं आपको बता दूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ध्रुव पर गलत जवाब है। और सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर दिशा में।
1: ठीक है मैडम।
0: कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर से क्विज कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेल्प क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते सोनी मैम।
0: नमस्ते, मेरा नाम सोनी नहीं है, मैं भारती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम पल्लवी है।
0: और कहाँ से हैं आप पल्लवी जी?
2: मैं भेड़िया से हूँ।
0: और किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: टेंथ में पढ़ती हूँ मैं।
0: अच्छा जी, तो आगे और क्या पढ़ने का इरादा है?
2: अभी सोचते नहीं है।
0: अच्छा, अभी सोच रही हैं। चलिए कोई नहीं, तो इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है, तैयार हैं आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल के लिए? तो पल्लवी जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बोधी वृक्ष। समय शुरू होता है आपका अब।
1: बोधी वृक्ष, ऑप्शन सी।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बोधी वृक्ष बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: दस फरवरी।
0: क्योर है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 10 फरवरी बिल्कुल गलत है। सही जवाब है 13 फरवरी। कोई नहीं, फिर अगले संडे ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कंटेस्ट में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो,
0: रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी प्रणाम मैम।
0: प्रणाम।
2: गोलू कुमार।
0: और कहाँ से हैं आप? गोलू जी।
2: मरियापुर।
0: तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
2: 9।
0: तो आपने कभी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है? आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: पिताजी का नाम श्री वीरेंद्र यादव, माता जी का नाम श्री मुकुल माला देवी।
0: तो आपने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है, तो तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए?
2: जी मैम।
0: तो गोलू जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए एक।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो गोलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए पहला बिल्कुल सही जवाब है।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो गोलू जी आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए बीचों बीच में, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में।
1: उत्तर दिशा में।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: जी मैम।
0: तो गोलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशा में बिल्कुल सही जवाब है। तो गोलू जी आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है कि बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं उर्दू।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं, पर इसी को लड़ते।
0: ओके। तो गुरु जी मैं आपको बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उर्दू बिल्कुल सही जवाब है।
1: थैंक यू।
0: तो आप तैयार हैं चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है कि नेताजी के उपनाम से किस महापुरुष को जानते हैं? नेताजी के उपनाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम सुभाष चंद्र बोस।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो गोलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है।
1: थैंक यू।
0: आप बता रहे हैं पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो आपसे आपका पांचवा प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद स्वामी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं स्वामी दयानंद।
0: श्योर है?
1: श्योर सनम परिकुलर से।
0: तो गुलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद स्वामी बिल्कुल सही जवाब है। तो गोलू जी आपका प्रश्न आपसे ये है कि लिखावट का ना बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है। लिखावट का ना बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है, कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन सी को लॉक कीजिए।
0: ऑप्शन
1: सी।
0: सी?
1: जी मैम।
0: श्योर है?
1: नो मैम, पर इसी को कीजिए।
0: तो गोलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
1: जी मैम।
0: कोई बात नहीं, फिर अगले संडे ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 8009294921 पर। जी हाँ, 8009294921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
1: सोनू दुबे बात कर रहा हूँ, पांती।
0: जी एक बार और नाम बता दीजिएगा।
1: सोनू दुबे की पांती से।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
1: ग्रेजुएशन लास्ट ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: तो आगे क्या करना है आपको?
1: इन सर्विसेज की तैयारी करनी है।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो और बढ़िया है। और इससे पहले आपने कभी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
1: जी जी।
0: वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
1: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिताजी का संतोष देवी।
0: जी जी, तो आप तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए?
1: जी जी।
0: तो सोनू जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
1: ऑप्शन सी महात्मा गांधी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो मैं आपको बता दूं सोनू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गंगा को किस नदी में?
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो सुनो जी, मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा प्रश्न आपसे है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? ऑप्शन ए छठवे, ऑप्शन बी सातवें, ऑप्शन सी आठवें। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सातवें फिर कीजिए ना।
0: क्योर है?
1: जी।
0: लॉक करें?
1: जी जी।
0: तो सुनो जी, मैं आपको बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी सातवें बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवधी।
1: अवधी भाषा में लिखा है।
0: तो आपको मैं बता दूं सोनू जी कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अवधी बिल्कुल सही जवाब है। तो पांचवे प्रश्न की तरफ चला जाए?
1: जी।
0: तो आपका पांचवा प्रश्न आपसे ये है कि दो हजार चौबीस में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के कितने बार शपथ ली? 2024 में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के कितने बार शपथ ली? ऑप्शन ए सातवीं, ऑप्शन बी आठवीं और ऑप्शन सी नौवीं बार। श्योर है?
1: नहीं,
0: तो चलिए सुनो जी, मैं आपके पांचवे प्रश्न के ऑप्शन सी नौवीं लॉक करती हूँ। तो आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आपसे आपका छठवां प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का नाम क्या है? बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी तोकली चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी।
1: ऑप्शन सी को किस कीजिए। तोकली चौधरी।
0: तोकली चौधरी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके छठे प्रश्न का ऑप्शन डी तोकली चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। तो तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी जहानाबाद।
1: ऑप्शन सी किसकी है ना?
0: श्योर है?
1: नहीं मैम, क्यों नहीं।
0: तो लॉक करें?
1: जी।
0: तो मैं बता दूं सुनो जी आपको कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जहानाबाद बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन ए गया।
1: ठीक है
0: कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई की।
2: हेलो
0: जी, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोले। आशिका खातून, किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: टेंथ में।
0: अच्छा जी, और क्या बनना चाहती हैं आप?
2: तो पढ़ाई करेंगे।
0: अच्छा, वैसे आपके मम्मी पापा का

0: पहला ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन सी, तीसरा। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। तो चलिए अंशिका जी, आपके ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आप, मैं बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए? तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि लिखावट का न बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है, कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय।
1: ऑप्शन सी
0: लॉक किया जाए। तो अंशिका जी, आपको बता दूं, आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट संडे फिर से क्विज कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: माये तो हमार दुनिया है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 1100 1।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: आत्मविश्वास का रास्ता भगवान बताइए, और हॉस्पिटल के डॉक्टर नंदिनी।

0: जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029 94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमज़।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: तोर कर्जा कबो न उतरी माई।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
2: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या

0: तोर कर्जा गबो नौतरी माई।
1: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गायिका अनु दुबे। कैसा लगा मेरा ये गीत कमेंट बॉक्स में बताइए। गाना अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल अनु दुबे एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
3: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और

0: बी के सामने गोपालगंज, हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shimaru Filmi Gaane.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 92 91। जी हाँ, 9852 78 8291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज जानते हैं जितिया पर्व के बारे में। और जितिया, जिसे जितिया भी कहते हैं, एक व्रत है जिसमें निर्जला यानी बिना पानी के उपवास पूरे दिन किया जता है और माताओं द्वारा अपने बच्चे की लंबी उम्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। विक्रम संवत के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी लोग द्वारा मनाया जाता है। और जब तक हमारे सभी श्रोतागण हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए जितिया पर्व का ख्याल रखते हुए माँ के ऊपर एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूँगी और गाना है माँ ही मंदिर माँ ही पूजा। तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो भी हम लोग माँ के ऊपर एक प्यारा सा गाना सुन रहे थे, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा। और ये तो बात बिल्कुल सही है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास काफ़ी सारे, और जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। और हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से गाना का लिंक भेज दिए हैं, सुनवा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो डियर भारती जी, मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं माँ ही मंदिर माँ ही पूजा बेहतरीन सॉन्ग, बहुत अच्छा लगा ओपनिंग सॉन्ग। और जितेंद्र बरौली से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि जीतिया कैसे चुकाऊंगा उस पर्व का कर्ज, जहाँ माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए कठिन व्रत मुस्कुरा कर निभाती है। और जीतिया के ढेर सारा शुभकामनाएं रेडियो रिमझिम परिवार को और सभी को, रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आप सबको भी जीतिया पर्व का एक बार फिर से शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वाओ बेहद खूबसूरत सॉन्ग, हार्ट टचिंग सॉन्ग। और जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, उत्तम सोनी हर पर्व से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गाना सुपर, गाना चल रहा है रेडियो रिमझिम पर, और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम पे, सुनील कुमार मैहर एमपी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, हेलो मैम, और कुचायकोट से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अपना नाम ज़रूर बताएं, कुचायकोट से तो हैं पर आपका नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं। लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, और क्या कई दिनों के बाद आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और एक गाने की फरमाइश भेज चुका हूँ, बजा दीजिएगा भारती जी और सारे रेडियो रिमझिम को सुनवाना चाहता हूँ। इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से रोशन टेलर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है कितने दिनों के बाद है आए। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमज।

0: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से कि गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, बिना मुझे भी गाना सुनना है और रेडियो रिमझिम गोपालगंज जिला की शान है और एक गाना सुना दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप अपना नाम बता देते तो मुझे पता चल जाता कि आप कौन हैं और कहां से हैं। और अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है। और मैसेज करने वाली हैं सालू जी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा गीत अभी जो चला। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, मेरा भी सॉन्ग है, सुना सकते हैं क्या? और बिना मतलब के प्यार करे यू माँ, ये तो माँ ही हो सकती है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है लिंक के माध्यम से। तो जी आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी, पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वाओ सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, मनोरमा दी हमारा भी फरमाइश पूरा करेंगी क्या? न्यायपारा विरई जिला बालो छत्तीसगढ़, बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, ईसर राज, पप्पू ठाकुर। तो जी बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और जी आपके भी गाने की आज फरमाइश पूरी की जा सकती है क्योंकि आज आपका दिन है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं, और कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से जुड़े हुए हैं और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो हाय मनोरमा जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से, हमें गाना सुनना है, ये लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक का गाना बजा दीजिएगा। अभी हम फिलहाल उत्तर प्रदेश लखनऊ से।

और कृष्ण मोहन जी की तरफ से लिंक पहुंचा हुआ है और गाना सुनना चाहते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो के घड़ी में 12:31 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सभी को एक बात बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहां मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि इनकी तरफ से केवल हाय मैसेज पहुंचा हुआ है और आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम ज़रूर बताएं और कहां से हैं ये भी ज़रूर बताएं, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहां मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि टुडे हेलो मैम, मेरा नाम आलिया है और मेरा नंबर पे कॉल कर दीजिए ना, नंबर है और मेरा गाना बजा दीजिए ना। तो जी बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रही है कि मैम मैं बहुत दिनों से मैसेज कर रही हूँ और भारती मैम मेरा गाना नहीं बजेगा क्या? और जी आपके गाने को मैंने परसों ही प्ले किया था और इसीलिए मैं आज फिर से प्ले नहीं कर सकती, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शनिवार दोपहर की शायरी। शनिवार की दोपहर है, मौसम भी मुस्कुरा रहा है, रेडियो रिमझिम पर योर वॉइस योर चॉइस का रंग छा रहा है, भारती मैम की मीठी आवाज़ जब कानों में घुल जाती है, थकी हुई दोपहर भी खुशियों से खिलखिला जाती है, दोस्तों की फरमाइश गीतों की प्यार भरा, भारती मैम के साथ आज का शो लगे शानदार, शनिवार की इस सुहानी दोपहरी में बस इतना पैगाम, रेडियो रिमझिम सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए तमाम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और काफ़ी बेहद खूबसूरत शायरी है और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। और मैसेज करने वाले का नाम राघव जी, ओम साई टेलर। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं। तो जी आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा, पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती दी, मैं कृष्ण मोहन कृष्णा करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और का हालबा भारती दी मनोरमा जी के का हालबा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है, और मेरा हाल भी ठीक है और मनोरमा जी भी ठीक हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहा है, नमस्कार प्रणाम बारोवा के भारती जी, हमों आगिल वानी हमरो हाजरी लगा दी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और काफ़ी दिनों के बाद फिर से नज़र आ रहे हैं, और इतने दिनों तक कहाँ थे ज़रूर बताइए। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम एक सॉन्ग सुनाइए, और मेरा नाम साहुल है कुछ आई कोर्ट से। तो बहुत बहुत स्वागत है साहुल जी आपका, और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
0: हाँ हेलो नमस्कार
7: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: काफी देर से हम फोन कर रहे हैं आपके पास।
7: जी जी बिल्कुल, तभी अभी दिखा है तो मैं कॉल उठाई हूँ आपका।
0: जी जी,
7: नाम बता दीजिएगा अपना।
0: फोन करना है, नाम मेरा सोनू कुमार चौरसिया।
7: और कहाँ से हैं आप?
0: हम लोग मठिया से हैं।
7: जी जी, तो आपको आज कौन सा गाना सुनना है?
0: गाना तो सुनना है, थोड़ा दोस्ती वाला गाना हो।
7: जी बताइए। बिल्कुल,
0: कोई अपने मन से सुना दीजिए दोस्ती वाला गाना, खूब बढ़िया। ये गाना बजाए थे सुबह, बहुत अच्छा गाना बजाए थे सुबह सुबह में आप।
7: जी माँ पे।
0: जी जी
7: जी, तो दोस्ती पे आपको गाना सुनना है।
0: जी जी सुनाना, एक मेरा दोस्त है मनु कुमार, एक मंतोष कुमार, एक सिकंदर भी है।
7: जी चलिए बढ़िया है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी जी, तो उनके पास थोड़ा कॉल करके बता देता हूँ, अच्छा रहेगा। लाइन पर रुकिए ना, बता रहे हैं।
7: नहीं नहीं लाइन पे नहीं रुक सकते, आपका गाना अभी जस्ट प्ले करेंगे, आप सुन लीजिएगा और उन्हें भी सुना दीजिएगा।
0: जी जी
7: जी, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थोड़ा बढ़िया हिटास गाना बजाइएगा।
7: जी बिल्कुल
0: ठीक।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
7: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:44 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको एक और बात बता दूं कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। तो जी, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि करिश्मा जी लिख रही हैं कि प्लीज़ गाना बजा दीदी। और जी, आपके भी गाने की फरमाइश पूरी करेंगे, पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। और मैं आफ्ताब आलम दोहा कतर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं रेशमा पठानकोट से जुड़ी हुई हैं और हेलो भारती मैम, क्या हाल चाल है? तो जी, मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार, हमें एक गाना सुनना है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। और लिख रहे हैं कि जादो हम जादोपुर से मुन्ना ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जय जोहर भारती जी, मैं न्यापारा विलई बिरई प्रमोद कुमार साहू, हम भी जुड़े हैं आपके साथ और लिख रहे हैं बहुत बहुत सुंदर सॉन्ग चल रहा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कौन कहता है लड़कियाँ सिर्फ पैसे पर मरती हैं, चौमिंग बर्गर मोमोज गोलगप्पे और तू क्या था दिखा निकाल रही है, तू तो कुरकुरे के लिए मरती है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँची हुई है सन्यासी रंजन जी की तरफ से और लिख रहे हैं कि हम सफ़र में थे इसलिए हम नहीं जुड़ पा रहे थे, अब हम इंडिया आ गए हैं। ओहो तो क्या बात है, आप इंडिया पहुंच चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है और यहाँ पे वॉइस के माध्यम से मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
8: ओ नमस्ते प्रणाम अदाव राधे राधे और कृष्ण वाणी जी, उम्मीद करता नहीं बहुत अच्छा हो गया और रोवा के शो में वेलकम बा। और बड़े दिनों से और इंतजार वाला ना हो कि रानी जी कब ये शो में अपन आवाज लेके जुड़े, तो आज हम मारदार इलेक्शन से भरपूर जुड़ गई नी जी। और रोवा के भोजपुरी प्रणाम बा और साथ में बताए मैं रोवा बानी कैसन आवाज तो काफी झकास बात अच्छे न हो क्या का। और स्टार्टिंग में जो गाना बजेले वानी ने बड़ा निक बाजी और माँ के ऊपर बजेनी है और माँ के बारे में हमने आज के दिन का बोली सन जितने बोले सब उतने कम पड़ जाई। और आज जो पर्व बा ना बाकी मैंने ये पर्व के अगर हमने जितने तारीफ करी सन उतने कम पड़ जाई। और हम अपन नाम बताइले वानी के बता दी तनी छोड़ी जी हमार नाम है रानी कुमारी, हमारे घर है रखवा। और बताई ना सोच तक खाइलवानी ना उम्मीद हुई के काके जरूर आई लो के हम तो आज ये जूतिया के शुभ अवसर पर एक माँ के लिए तो सॉन्ग बने ला ना का, आज बजा दी भारती दी और सॉन्ग के बोलवा मूवी के नाम बा लड़ला और तेरी उंगली पकड़ के चला। और सुबह से तो काफी भोजपुरी गाना चलल बार हुआ चैनल पर और काफी अच्छा लागल। और हमारा तरफ से जितना हमारे रेडियो दोस्त आनी लो सब कोई की रानी की तरफ से भोजपुरी प्रणाम बा। और भारती दी रोज जब जब आए नी ना तो काफी रोज ये निक लागे ला जी। और ये शो में बेसब्री से इंतजार रहा कि हम कब रोज शो में ये आवाज की जरिया जुड़ी और आज फाइनली और कसर पूरा कहनी। अगर अच्छा लागल हुई तबो बताएं और ना लागल हुई तबो बताएं। और पता बा रोज शो में अगर जगह ना दे तबो ढकेल के जाती और मैं घुसा मस्की करके जाती और अगर ना बजाएं तबो सुनती और बजाती तबो सुनती और शुक्रिया। और गाना बजाय तब ना शुक्रिया बोले रहुआ के, बाकी खुशी के मारी तो कुछ बोल देनी। और बतावे दी और रहुआ के कुछ सुना दी सुने जब क्यों गुस्सा होके ला ना तो हम सॉन्ग कौन गावे नी पता बा कौन रजा ऐसे कहे।

0: सकाईले। और ये गाना जितना आज मम्मिया लोग भूखल बानी लो, रानी के तरफ से सारी मम्मी लोग के हमारा तरफ से शामिल बा, और सबके नमस्ते प्रणाम मम्मी। और मम्मी लोग आज के मौसम भगवान बहुत अच्छा कैले वाली, और मम्मी लोग तो कुछ बोले वाला नहीं के, आज की पर्व ऐसन बाजी हमारे पास शब्द नहीं के। और सब कोई के बाय बाय।
1: और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है रानी जी की तरफ से। और मैं तो ठीक हूँ रानी जी, आप बताइए आप कैसी हैं। और आपका आवाज़ आज सुन के शो में बहुत अच्छा लगा, और आप वॉइस के माध्यम से जुड़ी ये भी बहुत अच्छा लगा। और आपकी भी आवाज़ काफ़ी आप ही के शब्द में निक है। और इसी के साथ चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि

लिख रही हैं करिश्मा जी की, रेशमा के का हलवा भारती दी और रानी दी, अच्छा गीत बा, आज बहुत अच्छा गीत बाजी और सुपर सॉन्ग आज बहुत अच्छा बा, आवाज़ आपके बहुत अच्छा बा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं रेशमा जी की, वाह क्या बात है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छा लगा सुन के और गाना भी बहुत अच्छा बा, ऐसे ही जुड़त रहीं और बहुत अच्छा लागेला रानी जी जुड़े नहीं था। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि रानी जी नमस्ते, कैसी हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग लाए हैं और रानी जी ये कुछ भी बोलते हैं ना यही बहुत ही खूबसूरत लगता है, मस्त गुनगुना रही थी। तो जी बिल्कुल काफ़ी बेहद खूबसूरत आवाज़ में इनकी वॉइस पहुँची हुई थी और ये मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं का हो रानी जी नमस्कार, का हाल चाल वाह हो, और लिंक फरमाइश बहुत बहुत ही अच्छा रहल हा उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है और तुझे बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और मैसेज करने वाले हैं साहुल जी कुचायकोट से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नाफिसा परवीन, और लिख रही हैं हाउ आर यू, तो जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी लिख रहे हैं कि गाना सुनने के बावे और गाने के लिंक भेज देता नहीं सुना दी, तो जी बिल्कुल आपके गाने को फरमाइश को ज़रूर पूरा करूंगी। उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुंची हुई और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और ज्योतिया से रिलेटेड सॉन्ग भेजे हुए हैं और गाने की बोल है माई हमार ज्योतिया भूखलवाड़ी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: माये तो हमार दुनिया है।
1: तो अभी हम लोग सुन रहे थे गणेश जी के तरफ से काफी बेहद खूबसूरत सा गाना ज्योतिया पर, और गाने की बोल थी माई हमार ज्योतिया भूखलवाड़ी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है, फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है गणेश जी की तरफ से वॉइस के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
2: गाना सुन के तो बहुत अच्छा लगा, बाकी रानी जी के गाना बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी गाना बजाने के लिए।
1: और यहाँ थैंक यू का मैसेज पहुँच चुका है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे आरजे भारती जी नमस्कार, और का हाल बा। तो मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनकी तरफ से एक मज़ेदार जोक पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पप्पू चुपके से नरक से स्वर्ग में घुस गया, देवताओं ने पकड़ लिया और खूब पीटा, मार खाने के बड़ी मुश्किल से उठा और बोला तुम्हारे इन्हीं हरकतों से कोई स्वर्ग नहीं आता है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंचा हुआ है धनेश जी की तरफ से। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है फीडबैक मैसेज जो कि लिख रहा है रानी जी के लिए हम लोगों की तरफ से एक त्रिमासी का फूल, उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से भेजे हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर हर महादेव भारती जी, जी आपको भी मेरा हर हर महादेव। और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है और बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गणेश जी के बोल दी भारती दी सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से। और लिख रहे हैं यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं नमस्ते नमस्कार भारती जी, हम भी जुड़ गए हैं और बाय MP से। और राम कुमार राम साहू जी राइस मिल हमारे साथ, शुभम सुभाष भैया जी हैं और हमको भी एक गाना सुनना है। और यहाँ काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और शंभू मिस्त्री जी भी हमारे साथ में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार बारानी जी के, और गोरखपुर से थावे आ रहे थे जो जोश जोश में टिकट नहीं लिया, अब चाय और समोसा वाला टीटी नज़र आ रहा है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है सन्यासी जी की तरफ से। तो जी ये आपके साथ घटा है या फिर चुटकुला भेजे हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं राघव जी ओम साई टेलर की तरफ से। और यहाँ गाने की लिंक पहुँची हुई है और गाने की बोल है कभी बेकसी ना मारा, और अलग अलग मूवी का गाना है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782891, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, बहुत सुंदर सॉन्ग बज रहा है, और मैसेज करने वाले हैं विजय कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो, कैसी हैं मैम जी, और मैं राजवीर सोनी बेगूसराय बिहार से, और आज एक सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा। और यहाँ काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे तरफ से दिलीप राम, आज़ाद अंसारी, बिरजू भाई, देवेंद्र, उत्तम सोनी और सभी श्रोता को सलाम कहिएगा। और मेरा नाम सागर आलम और फ्रॉम तेजपुर असम से जुड़ा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अर्ज किया है तन्हा रातों को बातों में उलझा लेता हूँ मैं, बिना बाबू सोना के भी खाना खा लेता हूँ। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
6: हेलो
5: जी,
6: प्रणाम। हम नगेंद्र माची उर्फ दयमान जी, घर पकौली बद्दू ब्लॉक फुलवरिया से बोलत नहीं मैडम जी।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझिम 90.4 एफएम में।
6: क्या समाचार बा मैडम जी?
5: जी हमारे तो ठीक बा, रुवा बताई रुवा कैसन बानी?
6: ठीक बा, हमरो ठीक बा, सुनो कहानी वही तरह से।
5: अच्छा जी, तब
6: सबसे पहले जीवतिया के शुभकामना।
5: जी जी, आपके भी जीवतिया के हार्दिक शुभकामना।
6: हाँ, कैसा गावत नहीं हम जीवतिया जीतिया के ऊपर गाना हुआ बजाव सब ठीक बनू?
5: बिल्कुल गाई।
6: अमृत के धार के केतनो पियाई एक माई बिना, अमृत के धार के केतनो पियाई एगो माई बिना, कैसे कर जावा जुराइए भाई एगो माई बिना, कके जीवतियाऊ भूख के जीवतिया बेटा के उमरिया बढ़ाई एगो माई बिना, कैसे कर जावा जुड़ाइए भाई एगो माई बिना। मैडम जी ये बजाओ तो बा।
5: जी जी, ये मूवी के गाना हो?
6: मूवी काजे ना भोजपुरी मैं माने ब्यास जी के हमें भोजपुरी आला ब्यास लोग है।
5: जी जी, अच्छा जी
6: सुनी ना ये नामी गाना हराती हम सुनमी है सनु तनु सर के अथी में प्रोग्राम में रहती अखन चल ला जाऊ 9 बजे के बाद में।
5: जी जी जी जी,
6: ये बजावे के बाद सुन या सबसे पहले रहोगे के सुनवावे के बजन नहीं? आ जतना लोग सुनता रेडियो रिंजिंग सब लोग का हम अपना पूरा परिवार के साथ सुनत तनी ठीक बनवा बजाई।
5: बिल्कुल, तो और गाना प्ले करते नहीं सुनत रही रेडियो रिंजिंग 90.4 एफएम।
6: अरे ठीक बा, प्रणाम
5: प्रणाम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:23 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और आप सभी को एक बात बता दूं कि आप सभी फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहां पोस्टर पे लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को भी नोट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सॉरी मैम, आपका नाम गलत लिख दिए हैं। और मैसेज करने वाले हैं राजवीर सोनी। तो कोई बात नहीं, कभी कभी किसी किसी से मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी ना कहिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय अभिमन्यु जी की तरफ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, सागर भाई जी को नमस्कार, और हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं राघव जी की, सन्यासी बाबा और रेडियो दोस्त के लिए शायरी। सन्यासी बाबा की बातों में सुकून सा एहसास है, उनकी मीठी वाणी में अपनापन खास है, भारती मैम की सुरीली आवाज़ जब दिल तक आती है, योर वॉइस योर चॉइस के दोस्तों की महफिल और भी सज जाती है, दोस्ती की ये शाम यूं ही मुस्कुराती रहे, हर दिल में प्यार की खुशबू महकती रहे, रेडियो के इस प्यारे से परिवार में यही दुआ है, हर चेहरे पर मुस्कान और हर दिल में खुशियां बनी रहे। और काफ़ी बेहद लाइन के साथ जुड़े हुए हैं राघव जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, नमस्ते, सूर्यभान सिंह, विसुंदरी घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहले पहुँची हुई थी और गाना सुनना चाहते थे जादवपुर से मुन्ना ठाकुर, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश है और गाने की बोल है जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में सभी के साथ।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
10: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ हमारे पास काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा, और इनकी तरफ से एक मजेदार जोक्स पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि एक लड़की गिफ्ट शॉप में काफी देर घूमने के बाद दुकानदार से बोली, भैया ये सामने जो हंसती हुई चुड़ैल की तस्वीर है वो कितने की है? दुकानदार सहमते हुए बोला, मैडम वो तस्वीर नहीं, कांच मिरर है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है धनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि और साहुल कुचाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं और इनकी तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि माँ ने ही तो जीवन सिखाया है, माँ ने ही तो जीना सिखाया है, हर गम में हंसना सिखाया है, बेटा अगर रोशनी है तो माँ वो दिया है जिसने जलना सिखाया है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि मेरे तरफ से सबको सुना दीजिएगा मैम, और आज मेरी माँ 8 साल की हो गई है मौत के रंग में। ओहो, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर गीत सूर्यभान सिंह विसुंदरी घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सिस्टर मेरा सॉन्ग कब बजेगा? तो जी, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करूंगी, पर उससे पहले यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से गाने की फरमाइश पहुँच हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है, टुनटुन यादव का गाना है और गाने की बोल है, माई हमार ज्योतिया भूखल बाड़ी। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: माये तो हमार दुनिया है।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97007065575।
5: ठक ठक।
6: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं,
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
3: आइए खादी अपनाइए, जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
3: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि आप सब तो जानते ही हैं कि अभी जो शो चल रहा है उसका नाम योर वॉइस योर चॉइस है, मतलब कि आपकी आवाज़ और आपकी पसंद। तो आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और अपनी आवाज़ में गाने की फरमाइश भेज सकते हैं, और ध्यान रहे रिकॉर्डिंग 30 से 35 सेकंड की ही हो और अपने गाने की फरमाइश सुन सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती दी, और कृष्णा जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सागर आलम अंसारी, सन्यासी रंजन बाबा का फरमाइश लाजवाब है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनीष जी की, हर हर महादेव, सन्यासी बाबा गावे आयल बाड़े, खर्चा के डर से घर से घर में रहत बाड़े। और लिख रहे हैं कि कब पूरा रेडियो टीम के पार्टी हुई सन्यासी भाई, और ये बात तो सन्यासी रंजन जी ही बताएंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद बा गाना बजावे खातिर भारती जी, और लिख रहे हैं कि महंगी चीज़ें खरीदने से कुछ नहीं होता, कल के बंदे ने 5 रुपए की मूली खाकर 500 रुपए के परफ्यूम पर वाट लगा दी। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँची हुई है सन्यासी रंजन जी की तरफ से। और यहाँ पे लिख रहे हैं सुपर राघव जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं विराट यादव गोपालगंज से, लिख रहे हैं कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई, जिस मकान में तेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, सारी उम्र उस मकान को बनाने में गुजर गई। और लिख रहे हैं हेलो हाय गुड आफ्टरनून मैडम जी, चुतिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी माताएं एवं बहनों को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर ज्योतिया का गीत, और सूर्यभान सिंह विसुंदरी गुरवाल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, और मैम मेरा भी गीत सुनवा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। पर यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है 1 बजे का, और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हर हर महादेव भारती जी, मेरा नाम शंभू यादव, घर बछला भागरखाप जिला गोपालगंज बिहार, मैं पुलिस लाइन के सामने से बोल रहा हूँ, और मुझे बहुत काफ़ी दिन बाद में जुड़ा हूँ मैम, तो मेरे को आज गाना सुनना है बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले। और कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, रंजन जी, बी रंजन जी, मनीषा जी, रिंकी जी, और सहाना जी, प्रतीक्षा जी, और हमारे प्रोपराइटर हैं दिलीप कुमार जी, और हमारे मैडम हैं जो उनका नाम राधिका गारमेंट जिनकी, और रिंकी देवी उनका नाम है। तो प्लीज़ भारती जी, मेरा वॉइस जरूर आज गाना चला दीजिएगा, काफ़ी दिनों बाद में जुड़ा हुआ हूँ बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले। और कुछ और मेरे दोस्त हैं जैसे कि राघव भैया हैं पुलिस लाइन के सामने से, थावे से कैंची में जो भैया शान लगाते हैं वो हैं, और रेलवे स्टेशन में भैया जो भूजा बेचते हैं वो हैं, और हमारे एक डरावा गाँव से शंकर सिंह हलवाई हैं और शैलेंद्र सिंह हैं। तो प्लीज़ मैम बजा दीजिएगा, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, हर हर महादेव। 1 बजे से पहले बजा दीजिएगा मैम, क्योंकि मुझे रोटी खाने जाना होता है। हर हर महादेव।

0: अब भौजी आज सुबह ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री। कमलश्री कमलश्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमलश्री कमलश्री कमलश्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई

अपने बच्चों के लिए प्रेम और ममता का बहुत भाविक पर्व है और जुतिया का ये पावन त्यौहार माँ के प्यार का है सच्चा उपहार। अपनी संतान की लंबी उम्र की खातिर माँ रखती है व्रत भूलकर अपना हर सुख संसार। माँ की ममता से बढ़कर कोई दौलत नहीं, माँ की दुआ से बढ़कर कोई ताकत नहीं। जुतिया के इस पावन दिन बस यही अरमान रहे, हर माँ की गोद में उसका बच्चा सदा मुस्कुराता रहे और माँ के चरणों में समर्पित यह पंक्ति भी बहुत प्यारी लगेगी। जिस माँ की दुआ जिस सिर पर हो उसकी संतान की राह में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं राघव जी और लिख रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, सन्यासी बाबा हमारे दुकान पर आए थे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और इनकी तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है और गाने लिख रहे हैं कि नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई अच्छी भी इस कदर ना लगे, हमने देखा है आपको उस नज़र से जिस नज़र से आपको नज़र ना लगे। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन है और रोहित जी की तरफ से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, मैं संजय प्रजापति मुबारकपुर आजमगढ़ से बोल रहा हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और लिख रहे हैं भारती मैम आपकी लिस्ट में मैं भी हूँ या नहीं, बता दीजिए। और ऐसा कोई जोर नहीं आपको, जब लगे तो प्ले कर दीजिएगा, हम समझ सकते हैं आपको पास, आपके पास तो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट लगा होगा, सबको ध्यान में रखते हैं। सो कोई ऐसा नहीं, आप नाम ले लेती हैं रेडियो स्टेशन पे, ये काम है क्या। धन्यवाद। और जी आपने हमें समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं राजवीर सोनी, और इनकी तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है सोनू निगम की आवाज़ में, और गाने की बोल है अब मुझे रात दिन। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैम हमरो पुर्जवा लगा दी हम हजरा सूरत से। तो जी बिल्कुल, राउर भी पुर्जा लग गई बा। और लिख रही हैं कि किसी ने पूछा ये मिर्ची किस मौसम में लगती है, मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं है, जब सच बोलो तब लगती है। और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं हजरा जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि धन्यवाद भारती मैम गाना बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं राजवीर सोनी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं छुटका सांखे रामदास के रहने वाला हूँ और मैं अभी काठमांडू में हूँ नेपाल में, और गाना सुनना है और यहाँ गाने की लिंक पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोना महंगा हुआ चांदी महंगी हुई, पेट्रोल और गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए, औरतों औरतें फिर भी चुप रहीं, लेकिन जिस दिन गोलगप्पे महंगे हो गए उस दिन तलवारें चलेंगी तलवारें। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही है हजरा जी की, थैंक यू मैसेज शामिल करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रही हैं, नासिफा परवीन, और गाना सुनना चाहती हैं और डेडिकेट है शबनम, तरन्नुम और ऑल फ्रेंड्स को। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, और गाने की बोल है बहुत जताते हो चाह हमसे। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, बहुत जताते हो चाहा हमसे। और मैसेज करने वाली हैं जो कि लिख रही हैं कि और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, नमस्ते, सूर्यभान सिंह विसुंदरी घुरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, और मुझे भी गीत सुनना है। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश की जाएगी, पूरी की जाएगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि शुरू की महफिल सजे दिल में उमंग जगाए, हर प्यार सा नगमा चेहरे पर मुस्कान लाए, सुपर सॉन्ग की धुन जब कानों में घुल जाए, थका हुआ ये दिल भी खुशी से झूम जाए, गीत हो प्यारा आवाज हो सुरीली, दोस्ती की महफिल लगे सबको रंगीली, बस यूं ही बजते रहे दिल को छूने वाले गीत, और हर पल बन जाए यादों की एक खूबसूरत प्रीत। क्या बात है, सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं राघव जी, और यहाँ थैंक यू भारती जी, मेरा हाजिरी लगाने के लिए मैसेज पहुँचा हुआ है सुनो कुमार जी के तरफ से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि विलेज मोगल बरेचा से, थैंक यू सिस्टर मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं अस्सलाम वालेकुम, की हाल जी आपका और आपके पूरे टीम का। तो जी मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं, सानिया सैफी जी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, सुनकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। भारती मैम जी सुपर सॉन्ग चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, न्यायपारा विरई जिला बालो छत्तीसगढ़ से। और बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इससे राजपकुर ठाकुर जुड़े हुए हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रानी मुखर्जी कहाँ बानी भारती जी, तो जी वो भी अपने काम में लगी हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। और राजकुमार राम साहू जी राइस मिल और हमारे साथ सुभाष भैया जी, और हमको भी एक गाना सुनाइएगा आजकल, गाने की बोल है आजकल फोनवा कल का सैया भूल गईले का, दिलवा कौनो शतिनिया से जोड़ ले का, और बबीता सागर का आवाज़ में ये गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: स्टूडियो आना।
1: और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ और हमारी मुलाकात आपसे होगी फिर दोपहर न्यूज़ के बाद। और जिनके भी गाने को प्ले नहीं किया है फिर दोपहर न्यूज़ के बाद प्ले करेंगे, तब तक आप सभी इस गाने को एंजॉय करें सभी।

0: Kuwait flag tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए। और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
4: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे और वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, ताकि एक डेवलप विकसित देश और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर होगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5,00,000 रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
3: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गाने केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने का मेन बीमार पाता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गाने सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये भी हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपका पास है ना नहीं है पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPC में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वैसे हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
4: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
1: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
5: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉ हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
7: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मुहूत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
13: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
13: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
13: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे। दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम, सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
6: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
7: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
6: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
7: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
6: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
7: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80 03 35 8 76 या 95 99 27 9 82।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज़ के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग बबीता सागर का जिसने बजवाया उनको दिल से धन्यवाद, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरी भी हाल चाल ठीक है और चल रहा है जी। तो मैसेज करने वाली हैं सानिया सैफी जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि काफ़ी देर से अपने गाने की फरमाइश का वेट कर रहे हैं, और मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती मैम, नमस्ते, सूर्यभान सिंह विशुंदरी घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, और मुझे भी गीत सुनना है, और गीत के बोल हैं गोरी के हाथों में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरे भी अल्लाह। और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है सूर्यभान जी की तरफ से। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की? अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही

0: घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गीत सुनवाने के लिए भारती मैम बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यभान सिंह विसुंदरी गोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से मैसेज पहुँच चुका है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं वाओ सुपर सॉन्ग। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि काफ़ी देर से वेट कर रही हैं और गाना सुनना चाहती हैं, करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से जुड़ी हुई हैं और गाने की बोल पहुँची हुई है और काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना है। गाने की बोल है मैं अगर सामने आ भी जाया करूँ, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो प्ले करते हैं गाने को और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है करिश्मा जी की तरफ से, जो कि लिख रही हैं, थैंक यू भारती दी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपने गीत को सुन रहे हैं, थैंक यू। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि वाओ बेहद खूबसूरत सॉन्ग, दिल को छूने वाले सॉन्ग है ये। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं राजा बाबू यादव अबू धाबी से, गुड आफ्टरनून मैम, मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, हम भी जुड़ गए हैं। और मैसेज करने वाले हैं सरफरोज अली गोपालगंज से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहती हैं और काफ़ी देर से वेट कर रही हैं, और मैसेज करने वाली हैं सानिया सैफी जी, और गाना सुनना चाहती हैं, गाने की बोल है, दिल कहता है चल उनसे मिल, और डेडिकेट है आपको और सभी लिसनर को। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, और गाने की बोल थी दिल कहता है चल उनसे मिल। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है सानिया सैफी जी की तरफ से, जो कि लिख रही हैं दिल से थैंक यू। और यहाँ पे फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए जानते हैं इनका फीडबैक।

0: मैसेज।
1: शुक्रिया।
0: और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना गा रही थी सानिया सैफी जी, और फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ था। और इसी के साथ यह मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम, ये सॉन्ग गाना किसी ने चोरी कर लिया है। और मैसेज करने वाले हैं सरफरोज जी, और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुंचा हुआ है और काफ़ी लंबी लाइन पहुंची हुई है, तो मैं इसे पढ़ूंगी, अगले मैसेज में शामिल करूंगी। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं हरे राम शर्मा, ग्राम सरफरा ब्लॉक बरौली जिला गोपालगंज से, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम सुबोध कुमार पिपरा नारायण से, और मुझे भी गाना सुनना है। लिख रहे हैं प्लीज़ दी सुपर सॉन्ग गाना बजा दीजिए। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश जो कि वॉइस के माध्यम से पहुंची हुई है।
2: हेलो भारती दीदी, मेरा भी गाना बजा दीजिए। गाना का फरमाइश है कि आओ फरिया ले ही जवानी। थैंक्स।
3: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765065750।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ते हैं आगे, और यहाँ जो कि हमारे पास मैसेज किए थे हरे राम शर्मा, उनका मैसेज पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं कि प्रणाम गोपालगंज, आज और अभी जे भी लोग ई रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुनत बानी, वो सब भैया भाभी, भैया भौजी, चाची और माई लोगन के हरे राम शर्मा सर के तरफ से खर जीतिया के बधाई भैया हो। आज पूरा गोपालगंज, बरौली, सिद्धवलिया और मीरगंज के हर घर में एकदम कड़क भक्ति के माहौल बा। हमार माता बहन लोगन अपनी लइकन के लंबी उम्र और तरक्की खातिर पूरे 24 घंटा के बिना अंजल के निर्जल व्रत रख ले बाड़ी। कल जे माई मेहरारू पूरा घर के माथा पर उठावले रहली, आज उ एकदम शांत चुपचाप भगवान के ध्यान में लीन बाड़ी। लेकिन कहानी में एगो गजबी ट्विस्ट आवेल बा मालिक। ट्विस्ट ई बा कि आज तो हवे शनिवार, स्कूल कोचिंग के छुट्टी के दिन, लड़का लोग एकदम मस्त बा, लेकिन घर के सर लोग और मर्द लोग पर भारी आफत आ गेल बा। आफत का हवे, आफत ई बा कि माई मेहरारू लोग तो व्रत में भूखी बाड़ी, पर हमनी के पेट में तो चूहा एकदम कूदत रहल बा। और भाई अब जब घर में लक्ष्मी व्रत में बाड़ी, तो रसोई के ताला और कमान सीधा आ गइल बा हमनी मरद के हाथ में। हम अपनी बात बताएं भाइयों, आज क्लास से छुट्टी तो मिल गइल बा, पर हाथ में चौक और डस्टर के जगह बेलन, चिमटा और कढ़ाई कुकर थामे के पड़ गइल बा। सवेरे से चाय के तलाश में पतीला खोजत खोजत परेशान बानी। तरकारी में नमक और हल्दी के अनुपात सेट करे में उतना दिमाग लग रहा है जितना क्लास में ओम के लॉ समझावे में भी नहीं लगेला। प्याज काटत काटत आँख से आंसू ऐसन गिर रहल बा माने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लाइट चल रहल बा। रेडियो रिमझिम लाइव महापोल चलिए, जितने भी गोपालगंज और बरौली के शादीशुदा भाई गुरुजी लोग या लड़के इस समय रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं, तुरंत फ़ोन उठाइए, मैसेज में बताइए। भैया हो हंसी मजाक अपनी जगह बा, लेकिन सच तो ये बा कि आज के दिन हमनी के एहसास करावल कि जे माई और पति बिना अनजल के हमनी के परिवार खातिर इतना बड़ तपस्या कर सकत बाड़ी, उनके सम्मान में आज एक दिन खाना बना के खिला देना कौनो बड़ा बात नहीं है। और पूरे गर्व से किचन संभालिए भाइयों, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम, और पोल में अपना जवाब तुरंत भेजिए। और हरे राम जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और इनकी तरफ से गाने की भी फरमाइश पहुंची हुई है, और गाना एक बोल है खाना बनाए बनाही, और सिंगर चुलबुली राज की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड।

0: गोपालगंज
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-97-06-575।
6: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और आप सबको बता दो कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, हम सब अपने बच्चे के साथ और परिवार के साथ लाउड साउंड में एंजॉय कर रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं हरे राम शर्मा। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है रोहित जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि शादी एक ऐसा गठबंधन है जहाँ दो व्यक्ति मिलकर जीवन भर उसे समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं जो पहले थी ही नहीं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्कार
6: जी। नमस्कार, बिल्कुल नाम बता दीजिएगा अपना। जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
7: गूगल बता दो कुछ लेने की दवाई।
6: और गाना किसी को सुनवाना भी है? तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। वेलकम।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए

0: डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, जैसे चाही थी वैसी तकदीर बन गई, हमने तो सिर्फ रेत में उंगलियां घुमाई थी, गौर से देखो तो आपकी तस्वीर बन गई। और मैसेज करने वाले हैं पाजी UP 54 से, और हाजिरी लगा दीजिएगा और गाना तो बजेगा नहीं मेरा, तो जी बिल्कुल आप अपने गाने की फरमाइश करें, इस बार ज़रूर बजेगा, और थोड़ा जल्दी क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं राघव जी की यहीं भुजा खाने, और जी तो आप खा लिए, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है और हम लोग भी खा लेंगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सानिया सैफी जी लिख रही हैं कि हम गूगल से पूछ के आई हूँ दवा बताई का। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि धनेश कुमार मिश्रा जी की पहली औरत बहन पता है हमारे गांव के सरपंच जी कोमा में चले गए हैं, दूसरी औरत हाँ बहन, पैसे वाले लोग तो कहीं भी घूमने जा सकते हैं, हम गरीब की तो किस्मत ही खराब है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है धनेश जी की तरफ से, और इसी के साथ यहां मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जिनके भी पसंद का गाना हो मज़ा आ गया, इस गाने को सुनकर फुल एंजॉय कर रहे हैं हरे राम शर्मा अपने बच्चों के साथ। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, राजा बाबू यादव अबू धाबी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना इनकी तरफ से पहुँचा हुआ है। और गाने की बोल है माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और

0: माँ को फिर से घर लाने का।
1: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
2: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी। आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
4: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि निर्जल व्रत रखकर माँ ने प्रेम और स्नेह की छांव दी, संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए यही है सबको बड़ी दुआ की नाव दी। और ज्योतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैसेज करने वाले हैं धनंजय कुमार सिंह, जिला सिवान महाराजगंज के छोटे से गांव पकवलिया टोला बलुआ से हैं। और लिख रहे हैं कि तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आसियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक बस हमारा होता। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर पर्वत को झुका नहीं सकते, हर दरिया को सुखा नहीं सकते, तुम हमें भूल जाओ भले ही लेकिन हम तुम्हें कभी भुला नहीं सकते। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश कुमार मिश्रा जी और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि आज रानी मुखर्जी का आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगा क्या? तो जी मैं बता दूं, आज वो दूसरे कामों में व्यस्त हैं, आज शो मेरे नाम पे है। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है इरशाद मास्टर जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं बाय बाय और समय भी होने ही वाला है बस। और इसी के साथ यहाँ जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है पाजी यूपी चौवन से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं। और खेसारी लाल यादव और का गाना है, गाने की बोल है कुछ तो लगाव रहे पिछला जन्म के। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यहाँ मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम विद्या निवास है और मैं मऊ जिला से, नमस्ते मैम, और लिख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं पाजी की थैंक यू मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि बाय बाय भारती मैडम जी। और यहाँ पे सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गए हैं। और लिख रहे हैं, यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है राघव जी की, भारती मैम के लिए शायरी। रेडियो रिमझिम की महफिल में जब भारती मैम की आवाज़ आती है, सुनी सी दोपहर भी जैसे खुशियों से मुस्कुराती है। हर लफ्ज़ में मिठास है, हर बात में अपनापन, आपकी आवाज़ सुनकर खिल उठता है हर दोस्तों का मन। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन लिखे हुए हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजा दीजिए पवन सिंह की आवाज़ में मैम। और मैं आपके गाने को आज तो प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि एक दो दिन पहले ही आपके गाने को प्ले किया गया था। और धनंजय कुमार सिंह जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं बाय बाय भारती जी, फिर कल मिलेंगे।

भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और नमस्कार मेरा नंबर पर लिखे मेरे नंबर पर 349 का रिचार्ज करवाइए और पाइए मुझे रोज़ाना ऑनलाइन देखने का मौका। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ है जुड़े हुए हैं, और बाय बाय आपको भी मेरी तरफ से, और यहाँ पाजी की तरफ से भी बाय बाय का मैसेज पहुँच गया है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है करिश्मा जी की तरफ से, जो कि लिख रही हैं बाय बाय भारती जी और बाय बाय मनोरमा जी। और गणेश जी की तरफ से भी मैसेज पहुंच गया है बाय बाय का। और इसी के साथ यहाँ जो लास्ट गाने की फरमाइश पहुंची हुई है उसे प्ले करते हुए मैं आप सभी से लूँगी विदा। तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि भारती मैम मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, और हेलो मैम क्या हाल है, और मेरा नाम अलीसा नहीद है और मेरा गाना बजा दीजिए। और गाने का नाम पहुँचा हुआ है और गाने की बोल है नैन तुहार कजरारी, और मैम प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा प्लीज़ मैम। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इसी के साथ लूँगी आप सभी से विदा। आप सभी इंजॉय करते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम,
12: सुनो दिल से।

0: कटनी जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

राम नाम आधार बा एह जीवन में एही से कवि कहतड़े देही का कहतड़े राम नाम रस पिया भैया हंसी।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: टक टक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

दिल में राखब, दिल के अरमान बना के, तोहके दिल में राखब, दिल के अरमान बना के, अरे जान जबले रही कसम से, तोहके जान बना के।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना

0: अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम।
2: सुनो दिल।

0: आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
2: आज तो फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी
2: आज फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी लास्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए टाइम खत्म होने वाला है।
2: अरे मुझे लगा 12 बज रहा है, 12:30 बज गया।
1: साढ़े बारह होने वाला है।
2: और हमारा भाई का फोन आया था। अच्छा, चलने के बाद नहीं।
3: हेलो
1: हेलो
3: हेलो
1: मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिएगा अपना।
3: अर्चिता मैम, गीत सुनना है।
1: गीत सुनना है? कौन सा गीत सुनना है आपको?
3: गाड़ी बजा रही है, सीटी बजा रही है।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
3: जितने
1: अच्छा जी, आप ठीक है ना?
3: हाँ।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
3: ठीक है,
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ठीक है, नमस्ते।
1: जी नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
0: मनोज भाई बोलते हैं
1: ना? भारती।
0: भारती जी, आज मनोज भाई ने किया है?
1: ना ना, वो जेल वाले आज ड्यूटी चेंज हो गई ना थोड़ा सा।
0: अच्छा ठीक है, पचपरा से बोला जी बोलते हैं।
1: जी जी, क्या हाल चल बा?
0: ठीक बा, अपन बताए।
1: जी हम लोग के ठीक बा।
0: चलिए आज नदिया का पार के गाना सुना दी कौनो।
1: जी बिल्कुल,
0: जो अच्छा रुआ लगे तो उनने सुना।
1: अच्छा,
0: कहिया सुनाए?
1: हमारा काल सुने को मिली।
0: ठीक बा, कोनो बात ना।
1: जी और गाना क्यों के सुनवाइबो करें?
0: पूरा सब कोई के आदमी पा कठे सब कोई के।
1: जी बिल्कुल, और सब ठीक बा ना?
0: हाँ हाँ, सब बढ़िया बा, सब बढ़िया बा।
1: गाना प्ले करता नहीं?
0: जी
1: सुनत रहे रेडियो रंजन 90.4।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर

0: बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30-9-92 या 90765-65750।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, नमस्ते मैम जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम में। जी हाँ, फिर भी जी जी कैसे हैं? फिर भी ठीक हूँ, आप बताइए। जी हम लोग भी ठीक हैं।
6: रिकॉर्डिंग हो रहा है?
5: जी रिकॉर्डिंग ही हो रहा है अभी।
6: अच्छा, तो कौन सुनना है
5: जी, बता दीजिए कौन सा।
6: कितना भी कर लगेगा
5: आपकी आवाज कट के आ रही है, एक बार और बता दीजिएगा।
6: कितना भी कर लेते हैं आप, हमको कम लगेगा।
5: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है
6: आपको? और मैम हमको, मेरी बहन है छोटी, उनको और जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को।
5: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4।
6: थैंक यू मैम,
5: वेलकम।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 91.4 एफएम में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: लाल बाबू बोल रहे हैं
0: जी। क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी हम लोग का भी ठीक है।
1: फिल्म का नाम है जीगर।
0: गाने की बोल
1: आए हम बराती बारात लेके
0: जी, और गाना किसी को सुनाना भी है।
1: लोहा है, काश है, गुटू है, सूरज है, रंजीत, रविंदर, संजय और आप है, आपका टीम है।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजन 90.4 एफएम।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
13: मधु सर यहाँ से राजू कुमार बोल रहे हैं, साउंड सुनना है।
14: जी जी, कैसे हैं आप?
13: ठीक हूँ, अच्छा हूँ
14: जी। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
13: तारी लाल यादव के कोई नया साउंड बजा दीजिएगा।
14: और गाना किसी को सुनाना भी है?
13: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी गुरु को।
14: चलिए फिर आपका गाना सुन सकते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।
13: ठीक है।

0: ओनली फॉर सुखाना सदे।
1: सलाम मैडम
2: जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: मैडम गाना सुनना है
2: जी। नाम बता दीजिए अपना पहले।
1: शमशेर।
2: और कहाँ से है? शमशेर जी आप?
1: पानीपत से
2: जी। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: दिल में टूट गया शीशे का चंद, दिल में टूट गया पत्थर का जवाना था
2: जी। और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ, सबसे पहले आपको, उसके बाद मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरे भाई को, उसके बाद मेरे पापा को, जितने सुनने मेहमान उनको सबको
2: जी। वैसे क्या करते हैं आप?
1: काम करते हैं।
2: काम करते हैं मतलब क्या काम?
1: बोता चुनते हैं।
2: अच्छा चलिए, तो
1: 10 साल का हूँ।
2: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले करे तब।
1: हाँ प्ले कीजिए
2: जी। जी सुनते
1: हैं। थैंक यू मैडम,
2: वेलकम
1: ये गाना प्ले करने के लिए
2: जी। सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4 एफएम।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
1: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, ultrasound.

0: साउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी सीटीजी मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
2: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95999 27 982।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
4: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
6: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
8: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
7: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
9: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
13: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
16: गोपाल ओचा ग्राम का गवासा जिला गुना।
15: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
16: मक्का की कटाई चल रही है।
15: अच्छा जी, चलिए बढ़िया।
16: और क्या, धूप पड़ रही है बहुत तेज?
15: गर्मी भी पड़ रही है।
16: गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है बहुत तेज और मक्का की कटाई चल रही है। और क्या,
15: चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए, आप सुनना सुनिएगा?
16: गाना सुनना है वो दिल का क्या कसूर फिल्म का, वो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो पूरे जाता है।
15: और गाना किसी को सुनाएंगे?
16: सभी को सुनवाएंगे, ये रेडियो सुनते हैं सभी को, रिमझिम वाले को और सुनील साहू जी, ज्योति साहू जी, जैन जी, नरेश प्रजापति को, उनको सुनना।
15: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव

0: रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 से 7 तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 तक बैठते हैं।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: नमस्कार मैम।
8: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 9.4 में।
9: जी आप नॉर्मल बोल रहे हैं, भारती बोल रहे हैं?
8: जी मैं भारती बोल रहे हैं।
9: हम सुबह कॉल बोला था निकोरिंग वो जिला देवर झारखंड से।
8: हाँ जी, क्या हाल चल
9: रहा कैसन बानी?
8: हम तो ठीक बने, रुवा बताए रुवा कैसन बानी?
9: हम हो गया बिल्कुल ठीक। हुआ
8: क्या होता है अभी?
9: हाँ क्या होता है, जो अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी बात घर में ही रुवा से हम पहली बार भोजपुरी में बात करते रहे।
8: हाँ हाँ बिल्कुल,
9: जी हमारा से उतना भोजपुरी बोले की नहीं क्या होता, हम कोशिश कर भोजपुरी, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा था भोजपुरी। कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। आज हम भरत व्यास शर्मा के को निर्गुण सुना दी बता था।
8: निर्गुण
9: जी जी, और डेडिकेट रही सबसे पहले रोवा के, जिसमें आरजी रेडियो रिंजन के आरजी है सब के, और जितने जितने भी लिस्नर आरजी रिंजन के सबके सुना होते हैं।
8: गाना प्ले करते नहीं सुनाते हैं रेडियो 90.4।
9: थैंक यू मैम,
8: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो। नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM
1: मैम।
0: जी नमस्कार।
1: हम बोल रहा हूँ सिवान जिला घर बोधा छपरा नीतीश कुमार पासवान।
0: जी कैसे हैं आप?
1: सही है मैम, अपना बताइए।
0: जी हम भी ठीक है।
1: नवरात्रि कहिया हो रहा है?
0: नवरात्रि अभी तो मुझे भी इतना अंदाजा नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे भी। 11 अक्टूबर के आसपास शुरू होने वाला है।
1: हाँ, 11 से 4 गाना सुना।
0: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: जीवती है माई के साथ जी। आपको सुनाना है, पूरा पूरा टीम को सुनाना।
0: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: वेलकम,
0: सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो मैडम, नमस्कार।
11: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
10: जी मैं मनान बोल रहा हूँ, कपूरपुरा से।
11: जी जी, कैसे?
10: हाँ हाँ ठीक है। गाना सुना है मैडम?
11: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
10: और रफी साहब का गाया हुआ है, कोई फूल ना खिलता तो कली भी ना होती।
11: जी जी,
10: ये गाना है रफी साहब का, ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
11: जी
10: हाँ, और ये गाना डेलिकेट रहेगा महावीर जी के नाम पे।
11: जी जी,
10: बहुत आप कॉल अटेंड की है जी मैडम आज।
11: नहीं, हम तो आज शुरू किए हैं थोड़ा लेट से।
10: कितना हुआ सर? 11:18 हम ट्रायल एक बार किए थे, तो आप बिजी बता रहे।
11: मतलब लेट से शुरू किए हैं, 5
10: वही होगा, 5-7 मिनट लेट होगा, तो ट्रायल हो रहा था। फिर बीच में एक मतलब हम करीब 11:40 पे ट्रायल किए, तो नहीं होगा। फिर सोचे कि अब जाकर थोड़ा सा ट्रायल कर दें, तो देखे कि अब लग गया। तो ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम, लेकिन बहुत आप कॉल अटेंड कीजिए की है यार, इतना की सारे लोग परेशान होंगे कॉल लगा के। ठीक है मैडम, तब ये गाना सुनवा दीजिएगा, कोई फूल ना होता कली भी ना होती, तो फिर आपको गया हुआ है। ठीक है मैडम,
11: करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
10: ओके।

0: हेलो।
1: हाँ
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल चाल बटे?
1: मेरा ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बढ़िया बटे हमारे। वो
1: सब कहाँ होता अभी?
0: तो पहचान लेनी हमके
1: विकास जी।
0: हाँ विकास जी,
1: सब और सब ठीक है ना?
0: और सब ठीक बटे। खाना वाना हो गया?
1: हाँ हाँ खाना हो गया। रवा नहीं खी का अभी?
0: नहीं हमने खाना वाना खा ले लो। जा मटरी रोटी वोटी बना ले रनिया जा, रो खतरा रख ले वानी जा। अब छुट्टी रहा ना, गांधी जयंती रहा तो आज 2 अक्टूबर के।
1: जी गांधी जयंती के सबसे छुट्टी में बा।
0: और बताई उन्हें बाढ़ के काल समस्या बाटे गोपालगंज में?
1: बाढ़ से तो शहर काफी ज्यादा बावे ने, हर जगह से पानी है ना, उन्हें पूरा बढ़ल जाता।
0: फिर और कॉल आज एक बार में लाग गई, ज्यादा कोशिश ना करे के पड़ेगा।
1: कॉल ओभरो से जाता, देखी 12:46 होता है।
0: तो आज गाना कौन सा सुनवाए?
1: बता दी कौन सा गाना सुने।
0: अपने पसंद से कोनो भी बजा दे गाना।
1: अच्छा भोजपुरी में सुने कि हिंदी में?
0: नहीं भोजपुरी में सुना, हमने तो बिहारी है, सुनू हिंदी सुनी।
1: भोजपुरी में भी ऐसा नहीं है कि गाना अच्छा ना होगा, बहुत अच्छा अच्छा गाना
0: है। गाना भोजपुरी मैंने बराबर भोजपुरी ना नु उतना भी सुनेला, हिंदी सुनेला जान ना। बजा दे कोनो भी बजा दे मैंने बढ़िया एकदम सेट सॉन्ग बजा दे।
1: रवि बता दे।
0: हम ही बता दे। मिलेगा तो हम बता देंगे, यही वाली बात है मैडम।
1: हिंदी में ना है?
0: हाँ हिंदी में बढ़िया है। दिल के सुकून करे वाला
1: गाना है।
0: भोजपुरी हमेशा तो हम भी सुनबे कर लो ऐसा
1: गाना। गाना सुनबो करे?
0: सबसे पहले रौदा के सुनवाए हमारे एक दिन सतवान भाई हुआ ना उपी से गोरखपुर के, और जितना रेडियो रिंग सुनने वाला है सबसे
1: चलेगा। और गाना है सब प्ले करते हैं।
0: ठीक बचे सॉरी
1: रेडियो रिंग
0: गोरखपुर। ओके प्रणाम
1: प्रणाम।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो नमस्कार मैडम जी।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
12: जी जी कैसे हैं आप?
11: बढ़िया है मैडम जी, आप मिल रहे हैं?
12: जी
11: जी जी बोलिए।
12: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
11: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है जय विक्रांता।
12: और गाने की बोल?
11: गाने के बोले कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी।
12: जी बिल्कुल, और ये गाना आप किसी को सुनवाएंगे?
11: जी जी मैम को, रजनी मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जीतेन धाकड़ी है और सत्यनारायण गहलोत जी है उज्जैन से, और कैलाश राजपूत जी है बिछिया से। इन सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
12: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
11: धन्यवाद मैडम जी।
12: वेलकम।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
0: हेलो
1: हेलो
2: जी, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
2: जी जी, मैं उज्जैन जिले के बंडागर तहसील से बोल रहा हूँ, सत्यनारायण गहलोत।
1: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
2: बस बढ़िया जी मैम।
1: क्या करते हैं?
2: और हमारे दोस्त जी सुनील जी साहू जी भी है मधुसूदनगढ़ से।
1: जी
2: हाँ,
1: वैसे आप क्या करते हैं?
2: जी मैम, मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ, मकान मालिक बनाने का। मकान जब मकान बनाता हूँ, कॉन्ट्रेक्टर हूँ।
1: चलिए, सब तो बढ़िया है।
2: जी हाँ,
1: आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: जी हाँ मैम, गाना सुना दीजिए। वो राजा हिंदुस्तानी गाना सुना दीजिए मैम, परदेसी परदेसी गाना नहीं।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
2: जी जी, सभी रेडियो सुनने वाले को और हमारे मधुसूदन वाले जी साहू जी को।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं?
2: जी मैम,
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू,
1: वेलकम।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 9.4 FM में।
6: नमस्कार मैडम
7: जी। नमस्कार,
6: और क्या हाल चाल है मैडम?
7: हेलो,
6: क्या हाल चाल चल रहा है मैडम आपके यहाँ?
7: जी हम लोग का तो हाल चाल ठीक है और मौसम भी हल्का सा गर्म है, ज्यादा नहीं फिर भी ठीक है।
6: हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्म है मैडम।
7: अच्छा, नहीं तो थोड़ा बहुत हवा चल रहा है तो मैनेज हो जा रहा है।
6: अच्छा, हमारे यहाँ तो सोयाबीन की कटाई चल रही है तो घाम लग रहा है मैडम।
7: हाँ तो बाहर इस समय निकलने पे थोड़ा बहुत तो धूप लग ही रहा है।
6: आ जाइए हमारे यहाँ भुट्टा खाने मैडम।
7: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है खाने में,
6: है ना?
7: हाँ
6: हमें भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ये कह रहा था मुझे एक गाना सुनवा दीजिए मैडम।
7: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
6: मुझे वो सुनवा दीजिए जेट की दुपहरी में पाँव जले सैया।
7: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
6: गाना सुनवाना है सुनील साहू जी को।
7: बिल्कुल
6: सुगनगढ़ वाले।
7: जी जी
6: ठीक है। कब चलेगा ये?
7: ये आपको चलेगा कल शाम को 5 से 7 के बीच।
6: अच्छा
7: जी बिल्कुल। आप अपना नाम बता देते तो अच्छा होता।
6: नाम गोलू साहू मकसूदनगढ़।
7: जी जी बिल्कुल।
6: आपके इंतजार रहेगा मैडम।
7: बिल्कुल इंतजार कीजिए, कल आपको सुनने को मिलेगा 5 से 7 के बीच में सुनने को मिल जाएगा।
6: 5 से 7 के बीच में।
7: जी जी
6: मैडम धन्यवाद आपका।
7: ओके गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: ठीक है धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग से 90.4।
1: मार्को जी स्वागत है कॉल उठाने के लिए। तो
0: जी
1: भाती जी क्या हाल चल रहा है?
0: हमारे हाल चल तो ठीक, बराबर बताएं।
1: क्या करे ना, गर्मी में परेशान बनी रहो, लोग पानी से परेशान है। और घर परिवार में कैसन बा समाचार?
0: जी घर परिवार में सब क्यों ठीक बा।
1: और सब बताए।
0: और सब तो बढ़िया बा।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक।
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: जी अब कभी खत्म भी होगा आपका ये अखबार। सुबह से कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर, कभी इस कुर्सी पर, कभी उस पलंग पर, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको, या सारा दिन यूं ही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की, कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े हैं तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर के कबाड़ी की दुकान बना हुआ है, आपे के कार्टून बने हुए हैं।
1: मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ, तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी।
0: और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। आप यहाँ से उठे, मुझे सफाई करने दे, मैं नहाऊं तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है।
1: और जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो, जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठकर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है या देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा।
0: धोखा?
1: भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है? मैं पूछता हूँ घर आखिर होता किस लिए है, घर का सुख कहते किसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ अब जाओ और दो कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना है।
0: अच्छा अच्छा। मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए, तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी, कोई लड़की, आखिर कब तक होते? अरे
1: भगवान क्यों चिंता करती हो, नौकरी आजकल मिलती नहीं और लड़की वो खुद, मेरा मतलब ब्याह लाएगा।
0: क्या कह रही हो?
2: गुड मॉर्निंग डैडी।
1: ओ गुड मॉर्निंग प्रिंस ऑफ वेल्स।
2: डैडी आज बड़ा मजा आया शहर।
1: हाँ, मुझे भी,
2: मौसम बहुत अच्छा था।
1: हाँ, यहाँ भी
2: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई डैडी।
1: हाँ, किसके साथ?
2: किसके साथ? हाँ, जी वो मेरा मतलब है।
1: हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो
2: जी
1: ना।
2: वो
1: डैडी कौन है वो?
2: डैडी बहुत अच्छी लड़की है, एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है, अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, और डैडी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार, आज की सोसाइटी की है इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती।
0: और
2: माँ धार्मिक विचारों की है।
0: अच्छा?
2: हाँ, अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी, मैंने बहराम डाकू नॉवेल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा?
0: क्या?
2: स्त्री सुबोधनी।
0: स्त्री सुबोधनी?
1: शाबाश बेटा शाबाश, मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, देखा?
2: मगर डैडी हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
1: क्यों क्यों?
2: क्या बताऊं, हमारा घर तो बिल्कुल बेड़ा है, मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं, रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर,
0: ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है, मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से।
2: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रख रखाव नाम को नहीं है।
1: अरे हाँ, रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ वो एक कप चाय।
0: हे भगवान।
2: डैडी मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी वो।
1: अरे देखना तो बेटा किसका फोन है।
2: देखता हूँ डैडी। हेलो, ओ शोभा, हेलो। हाँ मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ क्या अभी 15 मिनट में? मगर शोभा सुनो तो, बंद कर दिया। मम्मी डैडी
1: क्या हुआ?
2: शोभा शोभा डैडी।
0: अरे शोभा क्या हुआ शोभा को?
2: शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में।
0: तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देखती
2: हूं। वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही नजारा दिखाओगे उसे?
0: अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अजी सुनते हो, अब उठिए भी।
2: सारा घर कबाड़ खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
1: मगर वो चाल
2: डैडी तो। ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं? तेजी से उठिए ना प्लीज। भाग कर जाइए और शेव कीजिए। अच्छा, जी हाँ अच्छा, शेव कीजिए और कपड़े पहनिए। क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
1: अरे तो
2: मगर कुछ नहीं डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप हैं कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे बिल्कुल।
3: ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी देखो।
2: बस हो गया ना भाषण डैडी, जल्दी चलिए बनिए, संवरिए और मेकअप कीजिए। हाँ, और मम्मी मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्यों सुन रही हो? चलो फुर्ती से कमरा साफ करो, हाँ रसोई सवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो।
0: अरे हाँ हाँ, मैं तो अभी जाती हूँ।
2: ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी ये अपना शेविंग सेट तो लेते जाइए। और मम्मी तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ
4: ये अखबार है, हाँ ये बर्तन, ये फूलदान, अरे जूते भी यही है। वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के डब्बे। हमारा घर है या किताबें, वाह सब किताबें भी यही हैं। चुराबे हैं ये, और ये छतरी, दिया सिलाई को भी यहाँ हो रहा है। वाह वाह
2: डैडी, वही काला सूट पहनेगा जो मुझे पिछले साल सिलवाया था। और मम्मी तुम?
0: हाँ बेटी।
2: अरे तुम तो तैयार भी हो गई।
4: हाँ हाँ, वाह वाह मम्मी कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, ये हुई ना बात।
0: अरे यार तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो। सुनो, अरे देखो तो कैसे लग रहे हो। चलो चलो चलो चलो चलो,
2: मैं भी तैयार हो लूं।
0: चलो।
2: मेरे बुशर्ट का बुशर्ट, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई, लीजिए। अब कंघी गायब है, न जाने कहाँ चल।
4: वो हो, हाँ ये भी है, मिल गई मिल गई। ओफो, ये घर है या

0: हाँ, ये हुई ना बात दादी, बिल्कुल हीरो लग रहे हो।
1: हीरो के बेटे, मुझे गर्मी लग रही है।
0: बस थोड़ी देर की तो बात है डैडी।
1: हाँ,
0: बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी, मम्मी भी कैसे जंच रही है, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी यहाँ यहाँ बैठो। हाँ इधर इधर इधर, हाँ इस सोफे पर। हाँ डैडी, आप इनके साथ बाएं तरफ, नहीं बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ। हाँ या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ कितनी सुंदर जोड़ी है।
1: मगर बेटा,
0: बस डैडी बस बस बस बस बस बस, हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए। हाँ
1: ऐसे।
0: और मम्मी, मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए।
2: ला मुझे दो।
0: हाँ ये लीजिए, और बस इसी पोज में, बिल्कुल
2: ठीक है।
0: हाँ हाँ, बस अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए।
2: बिल्कुल पतला है ये तो।
0: शाबाश, वाह क्या शानदार तैयारी हुई है, घर भी नुमाइश की तरह बन समर गया है। डैडी शायद वो आ गई। आया, अभी आया। हेलो शोभा, आओ आओ, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो?
3: नहीं रमेश, मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी।
0: नहीं नहीं नहीं शोभा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा।
3: सॉरी रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही। ओके बाय।
0: मगर मगर सुनो तो शोभा, शोभा गई डैडी, वो किताब देकर चली गई
1: और इसने अंदर झांका तक नहीं।
0: मगर मगर वो
1: मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
0: मगर मगर डैडी उसे बहुत जरूरी काम।
1: रमेश के मोह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
0: मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारा हमारा बिगड़ा क्या है आखिर, कुछ ना कुछ संवरा ही तो है।
1: मुझे सबक देते हो, मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया, और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा तो अंगांगा कट गया।
3: अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है, अब फिर से आराम कर लीजिए।
1: हाँ जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज। हाँ टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर। हाँ इस तरह।
0: माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया, अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
3: अच्छा बेटा।
1: ये रहा तुम्हारा सूट, यहीं पड़ा रहा है सोफे पर, अब वो कहा है मेरा मेरा अखबार, उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा, एश्रे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा। हाँ मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए, और रसोई से वो जूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ, अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की, और अब मैं सोफे पर टांगे पसार कर नाविल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की, क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे।
3: ये लीजिए चाय।
1: हाँ ये हुई ना बात। मैंने कहा तुम भी बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो।
3: पहले जैसी ही लग रही हूँ।
1: अरे जरा देखना तो बेटा कौन है दरवाजे पर।
0: अच्छा डैडी। शोभा
3: है, इतना घबरा क्यों गए?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम।
3: हाँ मैं, क्यों कोई एतराज है?
0: एतराज नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई एतराज नहीं है, मगर मगर तुम तो
3: भाई। मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं?
0: सॉरी।
3: नमस्ते माता जी। नमस्ते पिताजी।
0: नमस्ते नमस्ते
3: नमस्ते। अरे ये बात क्या है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं?
0: कुछ नहीं शोभा, कोई बात नहीं। शोभा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम फिर कभी।
3: जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
4: हाँ हाँ बेटी यहाँ बैठो सोफे पर।
3: धन्यवाद। हाँ कितना आराम है यहाँ, कितना सुख
4: जी।
3: हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
0: बैठिए ना। शोभा तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
3: और रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर न हो कोई अजायब घर हो। नौकर है कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना। कहीं बैठने लगो तो यहाँ न बैठना बेटा अभी ठीक किया है, कहीं लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं, अंदर जाने लगो तो अरे रे रे रे इधर नहीं आना शोभा रानी अभी सफाई की है, कुछ उठाने लगो मैली हो जाएगी। उठते बैठते सोते जागते इंचों सेंटीमीटरों का हिसाब है हमारे घर।
0: लेकिन शोभा घर का रख रखाव सही पहनावा भी तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
3: इस पोजीशन में नहीं बैठो साड़ी खराब हो जाएगी, टेढ़े ना लेटो कपड़ों की केरेस खराब हो जाएगी, ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे, घर ना हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी।
0: ये भी खूब रही, बहुत खूब, देखो तो है।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
0: 9.4। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दा
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 6 जिलों की लगभग 8 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जमुई के चकाई में निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट से अगले वर्ष मार्च महीने से शुरू हो जाएगा उत्पादन। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए आज से 100 दिवसीय टीबी मुक्त बिहार जन भागीदारी अभियान की हुई शुरुआत। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, भारतीय दल ने 21 स्वर्ण समेत कुल 85 पदक अपने नाम किए। अब समाचार विस्तार से। गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 8 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, लेकिन बाढ़ की स्थिति पर इसका कोई खास असर नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सारण जिले में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद परसा प्रखंड में स्थिति गंभीर बनी हुई है।
8: परसा हाई स्कूल चौक के पास परसा छपरा मुख्य मार्ग पर लगभग 4 फीट पानी जमा हो गया है। वहीं परसा सोनहो मार्ग पर भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इसे देखते हुए दोनों सड़कों का आवागमन रोक दिया गया है। इधर पानापुर और मकेर प्रखंड में क्षतिग्रस्त तटबंधों से निकला बाढ़ का पानी अमनौर, जगदीशपुर, मकेर और परसा के नए इलाकों में फैल रहा है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज दरियापुर प्रखंड अंतर्गत 12वें पंचायत में संचालित सामुदायिक रसोई केंद्र और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इधर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से अब 28 टन से अधिक खाद्य सामग्री एयर ड्रॉप की गई। सांसद पप्पू यादव ने आज बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह।
7: हमारे गोपालगंज संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं है।
9: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले को जोड़ने वाली राम जानकी पथ पर अब भी लगभग 3 फीट बाढ़ का पानी बह रहा है। फैजुल्लाहपुर से सीतलपुर जमींदारी बांध तक करीब 1.5 किलोमीटर सड़क पानी में डूबी हुई है। बैकुंठपुर के 2 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी जमा है। गम्हारी गांव के जमींदारी बांध से सारण मुख्य तटबंध के बीच बसे 14 गांव में बाढ़ के पानी में कोई कमी नहीं आई है। वहीं प्यारेपुर पंचायत के कुछ नए इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मदेश कुमार तिवारी।
7: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इधर पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोलाघाट में चंपारण तटबंध टूटने से गंडक का पानी बेतिया, पैरिया और नौतन के इलाकों में फैल रहा है। वहीं पूर्वी चंपारण के नवादा, मझरिया और कढ़ान समेत कई गांव में लगभग 5 फीट पानी जमा है। वैशाली जिले के त्यारा क्षेत्र की चक सिंगार, वीरपुर, जोरावनपुर करारी, जोरावनपुर पराड़ी, सरायपुर, जहांगीरपुर, कर्मोपुर और तेरसिया पंचायतों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों के 16 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 28 टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 218 सामुदायिक रसोई केंद्र और एक राहत शिविर का भी संचालन किया जा रहा है। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज पटना से बेतिया के लिए बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के वास्ते राहत सामग्री से लदे 30 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री दुबे ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के सहयोग से राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसका वितरण प्रशासन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रखंडवार किया जाएगा।
10: पैकेट में आने से सामग्री से लेके धोती, मर्दानी, गमछा सब रखा गया है, तिरपाल भी रखा गया है, खाने का सामग्री भी है, बनाने का सामग्री में मसाला वगैरह, तेल वगैरह सब है। तो निश्चित रूप से जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो नीडी है, उन्हीं के लिए मंगाया गया है और बट रहा है जितना संभव होगा। निश्चित रूप से जन सेवा ही भगवान सेवा है, पीड़ित लोगों का मदद करें।
7: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जमुई के चकाई में निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट से अगले वर्ष मार्च महीने से उत्पादन शुरू हो जाएगा। श्री चौधरी आज प्लांट के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जमुई जिले को इस्पात केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
11: पूरा बिहार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसकी कल्पना को आगे बढ़ाना है, इसलिए जम्मू जिले में आए थे। यहाँ पर जमीन उपलब्ध हो सके और इथेनॉल जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट इथेनॉल प्लांट लग रहा है, इसका भी हम लोगों ने एक तरह से सर्वे किया, देखा और ऐसा बताया गया कि मार्च 2027 तक इथेनॉल प्लांट भी चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ स्टील के हब बने, इसकी कल्पना को आगे जमीन पर उतारना है।
7: प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए आज से 100 दिवसीय टीबी मुक्त बिहार जन भागीदारी अभियान की शुरुआत हुई। पटना के बिहार लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अताहुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने अभियान की शुरुआत की। राज्यपाल ने टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान और मरीजों के प्रति सामाजिक भेदभाव खत्म करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक लगभग 3,50,00,000 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 3,97,000 मरीजों की पहचान हुई है। सभी मरीजों का निशुल्क इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि अभियान में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। आईआरसीटीसी होटल टेंडर से जुड़े धन शोधन मामले में अब 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आज आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई के दौरान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपी पेश हुए। अगली सुनवाई के दौरान अदालत ने राजद अध्यक्ष को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए पीएम स्वनिधि योजना की सफलता की कहानी।
1: कोविड महामारी के दौरान शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आसान ऋण और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जोड़कर उनके कारोबार को नई गति दी है। जून 2020 में शुरू हुई इस योजना को अब मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत अब तक 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,12,00,000 से ज्यादा ऋण दिए गए हैं। इनकी कुल राशि 17,800 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि इसके तहत ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी की सुविधा उपलब्ध है।
2: मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है जो आज रेहड़ी पटरी ठेले ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है।
1: कुछ छोटे कारोबारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ऊंची दर वाले अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करने में मदद की है।
3: 5% पर ब्याज पर पैसा लेते थे, सुबह लेते तो शाम को वापस करना पड़ता था, चाहे मेरा दुकानदारी हो या ना हो।
4: पीएम स्वनिधि के तहत ही हमारे दुकान में इतना व्यवसाय हो गया जिससे हमारा हर एक तरीके से वृद्धि हुई।
5: इनकी सहायता लेते हुए अपने व्यवसाय को आगे से आगे ले जाने का कोशिश करें तो वो सफलता जरूर हासिल करें।
1: पीएम स्वनिधि योजना सब्जी फल विक्रेताओं, मोचियों, चाय दुकानदारों और अन्य छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का माध्यम बनी है। समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण वर्ष 2014 में आज ही के दिन विजयादशमी के अवसर पर हुआ था। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश भर के ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं। जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय दल ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक समेत कुल 85 पदक अपने नाम किए हैं। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है। एक रिपोर्ट।
6: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को 5-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने एशियाई खेलों में हॉकी में 5वीं बार स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। आज ही अमन सहरावत ने पुरुषों के फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम बोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: भारतीय हॉकी और क्रिकेट टीम समेत अन्य खिलाड़ियों की स्वर्णिम सफलता पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पटना के दानापुर में 6ठी केटेन ईस्ट जोन कराटे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में झारखंड के अभिजीत कुमार ने 14 वर्ष आयु वर्ग में रजत और अंजलि कुमारी ने 13 वर्ष आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता। बेतिया में 5 से 7 अक्टूबर तक अंतर सीमांत कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। SSP के TIG हरि प्रकाश ने आज टाउन हॉल में प्रतियोगिता के आधिकारिक मस्कट का अनावरण किया। प्रतियोगिता में पटना, लखनऊ, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और बल मुख्यालय सहित 6 सीमांत की टीमें हिस्सा लेंगी। सीतामढ़ी के बरगनिया के तकिया टोला में बिजली तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य झुलस गए। बेगूसराय जिले के कटपुर शेखपुरा प्रखंड के कोरई गांव में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वहीं जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भोला स्थान गंगा घाट पर दो युवक डूब गए, दोनों की खोज की जा रही है। बांका जिले के पंजवाड़ा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर मोड़ के पास पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 25 लाख रूपये मूल्य की शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसिया ओवरब्रिज पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक महिला तस्कर समेत तीन तस्करों को 152 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। वहीं जिले के सोनामुनी गोदाम थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के वीरपुर के सीमा चौकी सिमरी घाट के पास एसएसबी के जवानों ने 432 लीटर नेपाली शराब बरामद की है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गया जिला आज अपना 162वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 6 जिलों की लगभग 8 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जमुई के चकाई में निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट से अगले वर्ष मार्च महीने से शुरू हो जाएगा उत्पादन। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए आज से 100 दिवसीय टीबी मुक्त बिहार जन भागीदारी अभियान की हुई शुरुआत। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, भारतीय दल ने 21 स्वर्ण समेत कुल 85 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
9: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
8: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
9: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
8: कहाँ?
9: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
10: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
11: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
10: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
11: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
10: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
11: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95999 27 982।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
13: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
13: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने?

0: मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
11: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
12: तू जो है।
13: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
3: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
3: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: रेडियो रूम जिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक निदेशक सतर्कता का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सामान्य शर्तें, पात्रता, मानक आयु सीमा, आवेदन प्रपत्र का प्रोफॉर्मा आदि का विवरण संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है upsc.gov.in/vacancy-circulars। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में प्रशासनिक अधिकारी का एक पद स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए भरना चाहता है, जिसे आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये लिंक fti.ac.in/recruitment/advertisement for the post of administrative officer on deputation basis। राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के बल्लभगढ़, हैदराबाद और अहमदाबाद यूनिट्स के लिए आवश्यकता है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 2 तथा प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 की। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ncbindia.com। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैकॉन लिमिटेड को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों की, जिनमें विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्र शामिल हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं केमिकल इंजीनियरिंग। पदों की संख्या 58 है। शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, आयु, वेतनमान, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी आप हासिल कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.mekonlimited.co.in। वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान में लेखाकार का एक पद रिक्त है। उम्मीदवार को वाणिज्य में स्नातक, साथ ही वाणिज्यिक या शैक्षणिक संस्थान अथवा सरकारी कार्यालय में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या SAS लेखाकार के रूप में स्थापना संबंधी मामलों में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान भी वांछनीय योग्यता मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि आरंभ में 2 वर्ष के लिए है, जिसे IHM चेन्नई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के साथ एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना चाहिए, जिसे www.ihmchennai.org से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस पद से संबंधित नियम, शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि की जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
9: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
13: प्रसाद क्लिनिक,
14: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
13: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंट स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
14: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
15: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
16: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।

0: साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ।
1: आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन,
0: भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
2: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
7: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
8: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
7: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
9: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
7: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि

0: बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिधवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।

0: अभिमान।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
7: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कृषि मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। सड़कों के पेड़ से गिरने से एक पासी की हो गई मौत। विशेष ग्राम सभा का हुआ आयोजन। और हथुआ विधायक के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कृषि मंत्री ने जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके साथ सदर विधायक सुहास सिंह और जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने सदर प्रखंड के जगीरी टोला का जायजा लिया। पीड़ितों से मुलाकात की। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने जिला पदाधिकारी को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सभी किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की राशि नवरात्रि शुरू होने से पहले उनके खाते में भेजी जाएगी। कृषि मंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक भी की और बाढ़ की स्थिति पर प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली। इससे पहले क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रभारी मंत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
0: निश्चित तौर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है पूरी तहकीकात कर करके क्या कमी रही है, क्या लापरवाही रही है, इसकी समीक्षा होगी और उसके बाद फिर इसका हम लोग आपस में विमर्श कर लेंगे।
7: प्रभारी मंत्री ने कहा कि बांध टूटने के कारणों की समीक्षा की जाएगी और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आखिर बांध टूटने के पीछे क्या कारण रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मंथन किया जाएगा और आगे से ऐसे कारणों की पुनरावृत्ति ना हो इस पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा है कि 18 जिलों के किसानों को दुर्गा पूजा से पहले मुआवजा की राशि भेजी जाएगी। पूरे बिहार में 18 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और इसी को लेकर उन्होंने यह बयान गोपालगंज की धरती से दिया है। वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर आज जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संस्था में धन जमा या निवेश करने से पहले उसकी वैधता एवं पंजीकरण की जांच करें। अधिक लाभ, कम समय में दोगुना पैसा अथवा असामान्य ब्याज का लालच देने वाली योजनाओं से सावधान रहें। बिना उचित दस्तावेज एवं रसीद के किसी को भी अपना पैसा ना दें। अपना एटीएम पिन, ओटीपी, सीवीवी, बैंक पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए लिंक, क्यूआर कोड अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी लेन देन ना करें। बैंक खाता, एटीएम कार्ड एवं निवेश संबंधित दस्तावेज किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को ना सौंपें। किसी भी संदिग्ध लेन देन या वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल संबंधित बैंक एवं सक्षम अधिकार को सूचित करें। जिला प्रशासन ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि स्वयं जागरूक रहें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक करें। हथुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर पंचायत के पिपरपाती गांव के चंवर में आज सुबह एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि लोगों ने शव को जब चंवर में देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने एफएसएल टीम के माध्यम से मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहां आवश्यक जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि पहले अज्ञात शव को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया था, परंतु जब जांच पड़ताल हुआ तो पुलिस ने शव की पहचान कर ली। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक मनोज राम मोतिहारी जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के बखरी का रहने वाला बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार इसके परिजन यहां ताड़ के पेड़ पर ताड़ी उतारने का काम करते थे और इसी बीच यह भी कुछ दिन पहले यहां आया था और वहां चंवर में एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ के ताड़ी उतारने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान ताड़ के पेड़ से गिर गया जिससे इसकी मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक रूप से इसके मौत की पुष्टि और कारण को लेकर अब तक जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पर आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। आज हथुआ के विधायक राम सेवक सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। बताया जा रहा है कि फुलवरिया प्रखंड के लकड़ी बाजार में काफी समय से विद्युत की सप्लाई बाधित है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी और लोग बाजार में सड़क पर हथुआ विधायक का पुतला दहन करने लगे और फुलवरिया के जेई के विरुद्ध भी नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की। इधर गांधी जयंती के अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अधिकांश पंचायतों में ग्राम सभा की अध्यक्षता संबंधित मुखिया ने की। उप विकास आयुक्त, निदेशक, NEP और DPO सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर कार्यक्रम में भाग भी लिया। विशेष ग्राम सभा में भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर रिफॉर्म उत्सव का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को मिशन के प्रमुख प्रावधानों, रोजगार सृजन एवं आजीविका संवर्धन की जानकारी दी गई। ग्राम सभा में विकसित ग्राम पंचायत योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाकर काम करने के लिए बल दिया गया। पुलिस दीदी अब यह ब्रिगेड के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्टलों इत्यादि के पास आज भी नियमित गश्ती की गई। इस दौरान महिलाओं को सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अब यह ब्रिगेड की टीम द्वारा जिले के स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तथा छात्राओं एवं हॉस्टलों के आसपास नियमित गश्ती और निगरानी की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए छात्राओं एवं महिलाओं से संवाद कर उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद का रहने वाला आरिफ नवाज, जिसकी उम्र 15 साल है, बताया जा रहा है कि यह लड़का 2 तारीख से शाम 4 को घर से लापता हो गया है। परिजनों का कहना है कि यह शाम को 4 बजे करीब ई रिक्शा पकड़कर सांसा मूसा बाजार आया था। इसके बाद वहां से इसके गोपालगंज जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यह गोपालगंज भी नहीं पहुंचा और घर भी नहीं पहुंचा है। 2 तारीख से यह लड़का लापता है, जिसको लेकर परिजन परेशान है। 15 साल के इस लड़के का नाम आरिफ नवाज है और यह रामपुर दाऊद थाना कुचायकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने लोगों से सहायता की अपील की है। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान के तहत फरार चल रहे नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हंकार यादव को पकड़ा, जो महंत यादव का पुत्र है और बथुआ महुआ टोला थाना माझागढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर जिला स्थापना दिवस पर देर शाम भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी अम्बेडकर भवन में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे ने किया। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। उपस्थित लोगों का मन भी मोह लिया। कार्यक्रम में अजय तिवारी एवं समूह, शिवम खरवार एवं समूह, विनोद कुमार गुप्ता एवं समूह तथा SS डांस एकेडमी द्वारा गीत, संगीत और नृत्य की विविध प्रस्तुतियां दी गईं। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं एवं कला संस्कृति को जीवंत रूप प्रदान किया। इधर स्थापना दिवस पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिले की विकास यात्रा, प्रशासनिक उपलब्धियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा भी की गई। अधिकारियों एवं कर्मियों ने जिले के सतत विकास, जन सेवा को और बेहतर बनाने तथा आम जन तक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुगमता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पहुँचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिला स्थापना दिवस जिले की विकास यात्रा को स्मरण करने के साथ साथ भविष्य की प्राथमिकताओं और जन सेवा के प्रति संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा जिले के सर्वांगीण विकास एवं आम जन के हित में निरंतर कार्य किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ ही समाहरणालय परिसर में उत्सवी माहौल भी दिखाई दिया। उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों ने जिले की निरंतर प्रगति, समृद्धि और सर्वांगीण विकास की कामना भी की। इधर युवा आपदा मित्र के लिए फिर से 5 स्काउट गाइड के छात्र पटना के लिए रवाना हुए हैं। थाने जंक्शन से बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड की जिला इकाई के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें चयनित बच्चों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इस कार्यक्रम में धीरज कुमार, नीतीश कुमार, रवि, शुभम और सिराज आलम पटना के लिए रवाना हुए हैं। बिहार के कोने कोने से पटना में आपदा मित्र के लिए बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
8: कृषि मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। सड़कों के पेड़ से गिरने से एक पासी की हो गई मौत। विशेष ग्राम सभा का हुआ आयोजन। और हथुआ विधायक के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा।
7: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है?
9: उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
10: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
10: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
9: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
10: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
9: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
11: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
12: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
15: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
16: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
15: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
17: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
18: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
19: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
20: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
19: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
19: संपर्क करें 9939365923।
21: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
22: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
23: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555-67666।
17: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: रियाज रेट्रो।
24: अश्विन ने जो किया बटलर के साथ, क्या वो ठीक था? क्या वो नेक था? क्या मंकड़ करना जायज है? क्या रिया फारसी बोल रही है? अच्छा, आप क्रिकेट फॉलो नहीं करते, तो फिर पहले मंकड़ क्या है वो बताती हूँ, फिर अश्विन और बटलर का किस्सा दोहराती हूँ, फिर उसके बाद आपसे पूछती हूँ कि क्या जिंदगी ने आपको कभी मंकड़ किया है, या आपने कभी किसी और को अपनी खुदगर्जी में मंकड़ किया है? ओहो, कितना काम है देखो फिर आज के एपिसोड में मेरे लिए। सोच के ही थक गई, एक गाना सुन लेते हैं पहले।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: मन्ना दे की आवाज, योगेश जी के बोल, संगीत सलिल चौधरी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ऐसा ही लगा होगा बटलर को कुछ हफ्ते पहले, या फिर ब्राउन को कई दशक पहले, जब उनके बेल्स उखाड़ दिए गए और उनको आउट डिक्लेयर कर दिया गया नॉन स्ट्राइकर्स एंड से ही। तब विनु मंकड़ से, आज रविचंद्रन अश्विन के हाथों।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। रियाज रेट्रो।
1: मुझे अमिताभ बच्चन वाला नॉनसेंस डायलॉग याद आ रहा है नमक हलाल से, विजय मर्चेंट और विजय हजारे वाला, जो ध्यान से सुनो तो नॉनसेंस नहीं था एक्चुअली। मुझे सुनकर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, है ना? अच्छा ठीक से बताती हूँ। साल है 1947। हमारे क्रिकेट टीम में एक चमकते ऑलराउंडर थे, कपिल देव के क्रिकेटिंग पूर्वज समझ लो, नाम विनु मंकड़। वो स्लो आर्म लेफ्ट स्पिन बॉलिंग करते थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टूर पर था, मंकड़ बॉलिंग कर रहे थे, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे यानी उनकी तरफ बिल ब्राउन नाम के एक बैट्समैन थे, जो बार बार बॉल फेंकने से पहले ही अपने क्रीज से बाहर निकल जाते रन लेने के एंटिसिपेशन में। सुनने में आता है विनु मंकड़ ने 3-4 बार ब्राउन को वार्निंग दी, पर वो अपनी क्रीज से निकलता रहा बिफोर टाइम। आखिरकार तंग आकर मंकड़ ने बोलिंग रनअप को रोककर ब्राउन की विकेट के बेल्स निकाल दिए, क्योंकि टेक्निकली तो वो अपनी क्रीज के बाहर था और रन आउट हो सकता था। बवाल मच गया, पर अंपायर्स ने आखिर डिक्लेयर किया कि ये सही था, स्पोर्टिंग स्पिरिट में हो ना हो क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से था। और तब आउट करने का एक नया तरीका इजाद हुआ, जिसको आज तक मंकडिंग कहते हैं, जब बॉलर बॉल फेंकने से पहले रुककर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को आउट कर दे, अगर वो क्रीज के बाहर निकल चुका हो तो। और यही तरीका आजमाया इस साल के IPL में किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन रविचंद्रन अश्विन ने, जब राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर अपनी क्रीज से निकल गए। अश्विन ने कोई वार्निंग नहीं दी, बस विकेट ले लिया और क्रिकेट की दुनिया में फिर से खलबली मच गई कि हालांकि ये विकेट जायज था, ये क्रिकेटिंग स्पिरिट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था और जनता अश्विन के तिरस्कार में लग गई। हालांकि वो अभी तक अड़ा है इस बात पर कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपके साथ रिया, और ये तो हुए हिस्ट्री लेसन और करंट अपडेट। अब आप मुझे बताइए, जिंदगी ने कभी आपको मंकड़ किया?

0: लता जी को रुला के गया सपना उनका, फिल्म जूल थीफ, एस डी बर्मन का संगीत, बोल शैलेंद्र। एंड इफ यू गेट मंकडेड देन आप सच में हैं अनाड़ी। उसी फिल्म का टाइटल ट्रैक उससे पहले सुना आपने, आवाज मुकेश, क्लासिक पेयरिंग शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की। इसमें भी शैलेंद्र वीनो मंकड़ की ही तरह, वो भी ट्रूली द बाप ऑफ देम ऑल थे, है ना?
1: रियाज़ रेट्रो, ओनली ऑन गाना।
0: मैं रिया और मैं सोच रही थी, स्पिरिट ऑफ द गेम में हो ना हो, जिंदगी का तरीका तो मंकट करने का ही होता है। बट देन लाइफ नेवर डज प्ले अ फेयर गेम, डज इट? मंकट में गुस्सा और तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जी जान से खेलकर बाजी लगाकर हार जाना एक बात होती है, पर अनमने होकर, दोपल कॉन्सेंट्रेशन खोकर अगर हम जिंदगी में अपना विकेट खो बैठते हैं, वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रमोशन, वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता, वो प्रॉफिट, तो फिर लगता है ना, एज द क्लासिक ब्रिट फ्रेज गोज, दैट जस्ट वाजंट क्रिकेट। बट देन वही तो, लाइफ इजंट क्रिकेट। क्रूशियल इंटरव्यू से पहले वायरल हो जाता है, प्रपोज करने वाली डेट से पहले चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, जिस घर पे दिल आ गया था और जिसके डाउन पेमेंट को जोड़ने में 3 साल लगा दिए, वो फ्लैट कोई नकद देकर खरीद लेता है, जिस लड़के पे महीनों से दिल आया हुआ था, बेस्ट फ्रेंड से उसका इंट्रो कराते हैं और वो दोनों डेट करने लग जाते हैं, जो मैराथन की तैयारी में लगा था उसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है, जो समाज बदलने के सपने देख रही थी उसकी बायोप्सी पॉजिटिव आती है। हम अपने क्रीज से निकलते हैं बस 2 पल भूले से, और जिंदगी बॉल डालने से पहले रुककर हमारे बेल्स उखाड़ फेंकती है। कोई विलन है इस पिक्चर में? हाँ, कभी कभार हो सकता है आप अपने मंकड़, अपने अश्विन को इंसानी रूप में देखें, वो कॉलीग, वो बेस्ट फ्रेंड, वो राइवल, वो दुश्मन। पर अक्सर लाइफ्स बिगेस्ट ट्रेजेडीज डोंट हैव एनी विलन्स। तब गुस्सा किस पर निकालें? तब अपील किस थर्ड अंपायर तक ले जाए भाई?

0: अच्छा अब ना मुझे अपनी ही बात पे हंसी आ रही है। आई एम इमेजिनिंग जॉस बटलर सिंगिंग चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, वो अपना विकेट कैसे बचाए जिसका विकेट बॉलर ही उड़ाए। या सोचिए आज से 72 साल पहले बिल ब्राउन गा रहे हो, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, उड़ाई मंकड़ ने जब बेल्स अपनी, हम नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थे प्यारे।
1: रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना।
0: इन दो गीतों के भी क्रेडिट्स बताऊं? नहीं, इनके लिए शायद जरूरत नहीं, एटलीस्ट नॉट हियर। इट्स लाइक स्टेटिंग द ऑब्वियस। मैं रिया आपके साथ और हंसी मजाक एक तरफ, पर जब जिंदगी के मैच में हम आउट हो जाते हैं बिना ढंग से खेले भी, बिना कोई बैटिंग एरर किए, बस दो पल असावधान होने के लिए, तो चिढ़ तो मचेगी ही, जायज है। बुरा तब लगता है जब लाइफ, जिंदगी, डेस्टिनी, फेट, कोइंसिडेंसेस हमें मंकड़ करे, पर गुस्सा तब आता है जब कोई और इंसान करे, जब कोई दोस्त या कॉलीग या फैमिली मेंबर या पार्टनर जानबूझकर हमारे एक कमजोर लम्हे का फायदा उठाकर हमें आउट कर दे गेम से, देन द रेज रियली हिट्स, है ना। तब मन करता है दुनिया को आग लगा दे, बदले की भावना से जल जाते हैं हम कि अबे कायर एटलीस्ट प्ले अ फेयर गेम, एक मौका तो दो ढंग से बैटिंग करने का, युवराज की तरह 6 छक्के लगाकर तुम्हारी बॉलिंग पर हमेशा ग्रहण न लगा दिया तो नाम बदल देना। प्रोफेशनली और पर्सनली ऐसे लोग तो हैं जो बस मौके के इंतजार में होते हैं हमें मंकट करने के लिए। हमारा उस एक एब्सेंट माइंडेड मोमेंट, वो अनगार्डेड ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज का नाजायज फायदा उठाने के लिए। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि हमने कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं किया? दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने सच में कभी किसी को मंकड़ नहीं किया? और अगर किया तो उसके बाद कैसा लगा, मजा आया कि कोफ्त हुई?

0: हाँ जी, हम जो कहते सुनते हैं जिंदगी भर वो सदाएं पीछा तो करती हैं। इसीलिए अगर हमने कभी जानबूझकर उनकी एक चूक का फायदा उठाकर किसी को लाइफ के खेल में मंकड़ कर दिया हो, खुद से ये कहकर कि दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करे क्यों, सबने हमारा किया क्या, फिर हो सकता है कि हमारा किया हमें ही काटने को लौटे किसी दिन या किसी रात, है ना।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल।

0: जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। रियाज रेट्रो।
1: आदमी जो कहता है किशोरदा की आवाज फिल्म मजबूर, संगीत लक्ष्मी प्यारे, बोल आनंद बख्शी, उससे पहले था द मेगा हिट दम मारो दम, आशा जी आर डी आनंद बख्शी फिर से। जिंदगी की गेम में आउट तो हम बहुत बार होते हैं, कभी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिलती, कभी हेल्थ सेटबैक्स होते हैं, कभी पर्सनल रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। पर मैंने आज स्पेसिफिकली मंगड़िंग की बात छेड़ दी क्योंकि ये अश्विन बटलर वाले किस्से के बाद मुझे लगता रहा डिसमिसल से तकलीफ नहीं होती इस केस में जितना एक सेंस ऑफ अनफेयर प्ले से होती है, कि ये कानूनी हो शायद पर फिर भी अनुचित था। और ठीक इसी तरह जब हमारी जिंदगी में भी सेटबैक्स ऐसे आते हैं तब ज्यादा बुरा लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए ही तो ढील छोड़ी थी ना, थोड़े एब्सेंट माइंडेड हो गए थे, इतना बड़ा धक्का उसकी वजह से, ये तो सरासर गलत हुआ हमारे साथ। तब लगता है अगले को थोड़ा कंपैशन, थोड़ी सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, आगाह कर देना था, हम संभल जाते। स्पिरिट ऑफ द गेम तो जिंदगी पर भी लागू होना चाहिए ना। आफ्टर ऑल इंडियन आर्मी के सिग्नल स्कोर के मोटो की तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त तीव्र चौकस कैसे रह सकते हैं यार? क्या हमें छोटी गलती करने का भी हक नहीं? अपने क्रीज से जरा सा क्या निकले, जिंदगी ने विकेट ही ले ली।

फिल्म झुमरू किशोरदा का रूहानी रूप, कोई हमदम ना रहा कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे कोई हमारा ना रहा, जिंदगी के हाथों मंकड़ हो जाए तो यही लगेगा शायद। संगीत भी किशोरदा, बोल मजरू साहब। उससे पहले आविष्कार फिल्म से कपिल कुमार का लिखा, कानू रॉय का स्वरबद्ध किया, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है, ब्यूटिफुली रेंडर्ड बाय मन्ना दे। मैं आपके साथ इतनी देर थी रिया, जिंदगी के पिच पर बॉलिंग बैटिंग अपीलिंग करती। पता है ये जब बिना कोई बहुत बड़ी गलती किए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। जल्दबाजी में पांव जरा सा स्लिप हुआ और ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि 3 महीने बिस्तर पर, मजाक मजाक में एक ऐसा मजाक कर दिया कि जाने वाला लौट कर ना आया। यूं ही मस्ती में किसी का फोन उठाया और उसके इनबॉक्स में जो पाया उससे जिंदगी का रुख बदल गया। टाइनी मोमेंट ऑफ इनअटेंशन, इनडिस्क्रेशन, इनएडवर्टेंस, और हमें लाइफ के ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाना पड़ता है। तब जरूर लगता है कि क्या कभी फिर से कह भी पाएंगे डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

0: You were listening to Riya's Retro.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।
3: तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर वन ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने

0: से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमरीका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
1: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals, while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57kg gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53kg category. Deepak Punia won bronze in the men's 97kg freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Ganghuya Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India has climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said that this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said, "The 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey." He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharat Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. Mr. Modi also congratulated Kumkum Anil Mohod on becoming the first Indian woman to win recurve individual gold at the 2026 Asian Games. Prime Minister also congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57kg freestyle wrestling event. Mr. Modi expressed happiness that 6 decades later, India is back on the podium in the men's 97kg freestyle wrestling event at the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मास्टर निर्गुणों के भाव लगा दी का
1: नो
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
2: आज तो फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी
2: आज फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी लास्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए टाइम खत्म होने वाला है।
2: अरे मुझे लगा 12 बज रहा है, 12:30 बज गया।
1: हाँ, 12:30 होने वाला है।
2: और फोन आया था। अच्छा, चले के बाद नहीं।
3: हेलो
1: हेलो
3: हेलो मैम।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिएगा अपना। अर्चिता
3: मैम, गीत सुनना है।
1: गीत सुनना है? कौन सा गीत सुनना है आपको?
3: गाड़ी बजा रही है, सीटी बजा रही है।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी? अच्छा जी, आप ठीक है ना?
3: हाँ।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
3: ठीक है,
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ठीक है, नमस्ते।
1: जी नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मनोज भाई बोलते हैं?
1: ना, भारती।
0: भारती जी, आज मनोज भाई ने किया है?
1: ना ना, वो जेल बनी, आज ड्यूटी चेंज हो गई ना थोड़ा सा।
0: अच्छा, ठीक है, पचपरा से बोला जी बोलते हैं।
1: जी जी, हाल चल बा?
0: ठीक बा, अपन बताए।
1: जी हम लोग ठीक बा।
0: चलिए, आज नदिया का पार का गाना सुना दी कौन?
1: जी बिल्कुल,
0: जो अच्छा रुआ लगा तो उनने सुना।
1: अच्छा,
0: कहिया सुना है?
1: इस रुआ हमारे काल सुने को मिली।
0: ठीक बा, कोनो बात ना।
1: जी, और गाना क्यों के सुनवाई वो करें?
0: पूरा सब कोई के आदमी पा कच्छे सब कोई के।
1: जी बिल्कुल, और सब ठीक बा ना?
0: हाँ हाँ, सब बढ़िया बा, सब बढ़िया बा।
1: गाना प्ले करता नहीं?
0: जी
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
4: जी मैं सुरभि बोल रही हूँ,
3: जी जी कैसे हैं सुरभि जी?
4: ठीक हूँ, आप बताइए।
3: जी हम लोग भी ठीक हैं।
4: रिकॉर्डिंग हो रहा है?
3: जी रिकॉर्डिंग ही हो रहा है अभी।
4: अच्छा, तो कौन सुनना है?
3: जी बता दीजिए कौन सा।
4: कितना भी कर कम लगेगा
3: आपकी आवाज़ करते आ रही है, एक बार और बता दीजिएगा।
4: कितना भी कर लेते हैं आप हमको कम लगेगा।
3: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है
4: आपको? और मेहमान हमको, मेरी बहन है छोटी, उनको और जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को।
3: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजन 90.4 FM।
4: थैंक यू मैम,
3: वेलकम।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: लाल बाबू बोल रहे हैं
0: जी। क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी हम लोग का भी ठीक है।
1: फिल्म का नाम है जीगर।
0: बताने की बोल
1: आए हम बराती बारात लेके
0: जी। और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: लोहा है, काश है, गुड्डू है, सूरज है, रंजीत, रविंदर, संजय और आप है, आपका टीम है।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: मधु सर यहाँ से राजू कुमार बोल रहे हैं, साउंड सुनना है।
2: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, अच्छा हूँ
2: जी। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: तारी लाल यादव के कोई नया सॉन्ग बजा दीजिएगा।
2: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी गुरु को।
2: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।
1: ठीक है।

0: खाली फोर सुखा न सजे।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: मैडम गाना सुनना है।
1: जी नाम बता दीजिए अपना पहले।
2: शमशेर।
1: और कहाँ से है शमशेर जी आप?
2: पानीपत से।
1: जी और कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: दिल मेरा टूट गया, शीशे का चम दिल मेरा टूट गया, पत्थर का जमाना था।
1: जी और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: हाँ, सबसे पहले आपको, उसके बाद मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरे भाई को, उसके बाद मेरे पापा को, जितने सुनने नवान उनको सबको।
1: जी वैसे क्या करते हैं आप?
2: काम करते हैं।
1: काम करते हैं मतलब क्या काम?
2: बोता चुनते हैं।
1: अच्छा चलिए ठीक है, तो
2: 10 साल का हूँ।
1: अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले करे तब?
2: हाँ प्ले कीजिए।
1: जी जी सुनते
2: हैं। थैंक यू मैडम,
1: वेलकम
2: गाना प्ले करने के लिए।
1: जी सुनते रहिए रेडियो रमजिन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: गोपाल ओचा ग्राम का कपास से लगून।
2: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
3: मक्का की कटाई चल रही है।
2: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है।
3: और क्या, धूप पड़ रही है बहुत तेज?
2: गर्मी भी पड़ रही है।
3: गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है बहुत तेज, और मक्का की कटाई चल रही है। और क्या,
2: चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए, आपने सुनिएगा
3: गाना सुनना है वो दिल का क्या कसूर फिल्म का, वो मिलने की तुम कोशिश करना पड़ा, कभी न करना पड़ा तो टूट जाता है।
2: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
3: सभी को सुनवाएंगे, ये रेडियो सुनते हैं सभी को, रिमझिम वाले को और सुनील साहू जी, ज्योति साहू, जीतन जी, नरेश प्रजापति को, इनको सुनना।
2: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम, बताना करना चाहते हैं मैडम।
1: बिल्कुल, नाम बता दीजिएगा अपना।
0: जी सर, मैं दागर बात कर रहे हैं, जिला ककवास मध्य प्रदेश।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है मैडम जी, अभी दिन दिन चल रहे थे। अभी तो मक्का कटाई चल रही है, मैं तो नगीने का काम करता हूँ, जयपुर में चलता है।
1: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: गाने के बोल है अंशली का, अंशली मेरे अनुमानों के पंख लगा। गाने डेडिकेट भी करना चाहूँगा दोस्तों को शेयर करना चाहूँगा, दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा।
1: बिल्कुल, नाम ले लीजिए, बताइए।
0: गोपाल ओझा भी है, सुनील राउत भी है, राकेश है, गोलू है, अतुल है, सारों को रहेगा और आपको रहेगा, और जुड़ी भी छोटा जुड़ रहे हैं, सबको रहेगा।
1: जी, तो आपका गाना
0: प्ले
1: करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029।

0: 2994 जी हाँ 8029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: जी आप नॉर्मल में बोल रहे हैं, भारती में बोल रहे हैं?
1: जी मैं भारती बोल रहे हैं।
2: हम सुबह कॉल बोला था निकोरिंग है, वो जिला देवरी झारखंड से मैं।
1: हाँ जी, क्या हाल चल
2: रहा है? बनी
1: हम तो ठीक बनी, रुआ बताए रुआ कैसे बनी?
2: हम हो गए बिल्कुल ठीक। हुआ
1: क्या होता है अभी?
2: हाँ क्या होता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी बात घर में है, रुआ से हम पहली बार भोजपुरी में बात करते रहे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बोल लेता
2: नहीं। जी जी हमारा से उतना भोजपुरी बोले कि नहीं क्या होता है, हम कोशिश कर भोजपुरी लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा था भोजपुरी बोलने।
1: जी जी भोजपुरी अच्छा से बोल लेता नहीं,
2: तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। आज हम भरत व्यास शर्मा के कोनो निर्गुण सुना दी बता था।
1: निर्गुण तो कुछ नहीं को करें।
2: जी जी और डेडिकेट रही सबसे पहले रोवा के जिसमें आरजी रेडियो रंजन के आरजी है सब के और जितने भी लिस्नर आरजी रंजन के सबके सुना होते हैं।
1: जी जी बताओ तो और गाना प्ले करते नहीं सुनाते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
1: नमस्कार मैम,
0: जी नमस्कार।
1: हम बोल रहा हूँ सिवान जिला घर बोधा छपरा नीतीश कुमार पासवान।
0: कैसे हैं आप?
1: सही हूँ मैम, अपना बताइए।
0: जी हम भी ठीक है।
1: नवरात्रि कहिया हो रहा है?
0: नवरात्रि अभी तो मुझे भी इतना अंदाजा नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे भी। शायद 11 अक्टूबर के आसपास शुरू होने वाला है।
1: हाँ, 11 से स्टार्ट होगा। एक गाना सुना
0: बिल्कुल बता दीजिए। कौन सा?
1: जीवती है माई के साथ लीजिए, आपको सुनाना है, पूरा पूरा टीम को सुनाना है।
0: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: वेलकम,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, they watch the head, to get it, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को

0: प्रोग्राम पे। बहुत आप कॉल अटेंड की हैं जी मैडम आज।
1: नहीं, हम तो आज शुरू किए हैं थोड़ा लेट से।
0: कितना हुआ था? 11:18 तो हम ट्रायल एक बार किए थे, तो आप बिजी बता रहे।
1: थोड़ा सा मतलब लेट से शुरू किए हैं। 5
0: तो वही होगा, 5-7 मिनट लेट होगा तो ट्रायल हो रहा था। फिर बीच में एक मतलब हम करीब 11:40 पर ट्रायल किए तो नहीं होगा। फिर सोचे कि अब जाकर थोड़ा सा ट्रायल कर दे तो देखे कि अब लग गया। तो ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम। बहुत आप कॉल अटेंड की हैं आज, इतना कि सारे लोग परेशान होंगे कॉल लगा के। तो ठीक है मैडम, तब ये गाना सुनवा दीजिएगा। कोई फूल ना होता कली भी ना होती, तो फिर आपको गया हुआ है।
1: ठीक
0: है मैडम,
1: करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: ओके।

0: हेलो,
1: स्वागत है रेडियो
0: 94.4
1: एफएम। नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: क्या हाल
0: चाल बटे? मेरा ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया बटे हमारे।
0: सब कहाँ होता अभी?
1: तो पहचान लेनी हमके
0: विकास जी।
1: हाँ विकास जी।
0: सब और सब ठीक है ना?
1: और सब ठीक बटे। खाना वाना हो गया?
0: हाँ हाँ खाना हो गया। नहीं अभी
1: नहीं, हमने खाना वाना खा ले लो। मटरी रोटी वोटी बना ले रनिया जा और खतरा रख ले वनी जा। अब छुट्टी रहा ना, गांधी जयंती रहा तो आज 2 अक्टूबर के।
0: गांधी जयंती के सबसे छुट्टी बा।
1: और बताई उन्हें बाढ़ थे काल समोसिया बाटे गोपालगंज में?
0: बाढ़ से तो शहर काफी ज्यादा बावे ने, हर जगह से पानी है ना, उन्हें पूरा बढ़ल जाता।
1: किरा और कॉल आज एक बार में लाग गया, ज्यादा कोशिश ना करे के पड़ा।
0: कॉल ओभरो से जाता, देखी 12:46 होता।
1: तो आज गाना कौन सा सुनवाए?
0: बता दी कौन सा गाना सुने?
1: अपने पसंद से कोनो भी बजा दे गाना।
0: अच्छा, भोजपुरी में सुने की हिंदी में?
1: नहीं भोजपुरी में सुना, हमने के बिहारी है सुनो, हिंदी सुनी।
0: भोजपुरी में भी एक नहीं है कि गाना अच्छा ना होगा, बहुत अच्छा अच्छा गाना
1: होगा। गाना भोजपुरी मैंने बराबर भोजपुरी ना नु उतना हम भी सुने ला, हिंदी सुने ला जान। बजा दे कोनो भी बजा दे मैंने बढ़िया एकदम सेट सॉन्ग बजा दे।
0: रवि बता दे।
1: हम ही बता दे। मिलेगा तो हम बता देंगे, यही वाली बात आई है मैडम।
0: ये तो हिंदी में ना है?
1: हाँ हिंदी में, बढ़िया है।
0: हाँ, हाँ।
1: दिल के सुकून करे वाला
0: गाना है।
1: भोजपुरी हमेशा तो हम भी सुनबे कर ला
0: सुन। गाना के सुनबो करे?
1: सबसे पहले रौदा के सुनवाए हमारे एक दिन सतवान भाई हुआ ना उपी से गोरखपुर के, और जितना रेडियो रेडियो सुनने वाला है वो सब
0: चलेगा। और गाना सब प्ले करते हैं?
1: ठीक बेटे, सॉरी
0: रेडियो
1: गोरखपुर। ओके प्रणाम
0: प्रणाम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
7: जी जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है मैडम जी, आप मिल रहे हैं?
7: जी
6: जी जी, बोलिए।
7: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है जय विक्रांता।
7: और गाने की बोल?
6: गाने के बोले कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी।
7: जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसी को सुनवाएंगे?
6: जी जी, सोनी मैम को, रजनी मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र धाकड़ती है और सत्यनारायण गहलोत जी है उज्जैन से, और कैलाश राजपूत जी है बिछिया से। इन सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
7: जी बिल्कुल। तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमशन 90.4 FM।
6: धन्यवाद मैडम जी।
7: वेलकम।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
0: हेलो,
1: हेलो
2: जी, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
2: जी जी, मैं उज्जैन जिले के बंडागर तहसील से बोल रहा हूँ, सत्यनारायण गहलोत।
1: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
2: बस बढ़िया जी मैम।
1: क्या करते हैं?
2: और हमारे दोस्त जी सुनील जी साहू जी भी है मधुसूदनगढ़ से।
1: जी
2: हाँ,
1: वैसे आप क्या करते हैं?
2: जी मैम, मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ मकान मालिक बनाने का। मकान जब मकान बनाता हूँ, कॉन्ट्रेक्टर हूँ।
1: चलिए, सब तो बढ़िया है।
2: जी हाँ,
1: आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: जी हाँ जी हाँ मैम, गाना सुना जी, वो राजा हिंदुस्तानी गाना सुना दीजिए मैम, परदेशी परदेशी गाना नहीं।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
2: जी जी, सभी वीडियो सुनने वाले को और हमारे मधुसूदन वाले जी साहू जी को।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं
2: जी मैम।
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू,
1: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: नमस्कार मैडम
6: जी। नमस्कार।
5: और क्या हालचाल हो रहा है जवान यहाँ?
6: हेलो,
5: क्या हालचाल चल रहा है मैडम आपके यहाँ?
6: जी हम लोग का तो हालचाल ठीक है और मौसम भी हल्का सा गर्म है, ज्यादा नहीं फिर भी ठीक है।
5: हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्म है मैडम।
6: अच्छा, नहीं तो थोड़ा बहुत हवा चल रहा है तो मैनेज हो जा रहा है।
5: अच्छा, हमारे यहाँ तो सोयाबीन की कटाई चल रही है तो घाम लग रहा है मैडम।
6: जी हाँ, तो बाहर इस समय निकलने पे थोड़ा बहुत तो धूप लग ही रहा है।
5: आ जाइए हमारे यहाँ भुट्टा खाने मैडम।
6: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है खाने में,
5: है ना?
6: हाँ,
5: हमें भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ये कह रहा था मुझे एक गाना सुनवा दीजिए मैडम।
6: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
5: मुझे वो सुनवा दीजिए, जेट की दुपहरी में पाँव जले सैया।
6: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: गाना सुनवाना है सुनील साहू जी को।
6: बिल्कुल,
5: चिकनगढ़ वाले।
6: जी जी
5: ठीक है। कब चलेगा ये?
6: ये आपको चलेगा कल शाम को 5 से 7 के बीच।
5: अच्छा
6: जी, बिल्कुल। आप अपना नाम बता देते तो अच्छा होता।
5: नाम गोलू साहू मकसूदनगढ़।
6: जी जी बिल्कुल,
5: आपका इंतजार रहेगा मैडम।
6: बिल्कुल इंतजार कीजिए, कल आपको सुनने को मिलेगा, 5 से 7 के बीच में सुनने को मिल जाएगा।
5: 5 से 7 के बीच में?
6: जी जी
5: मैडम, धन्यवाद आपका।
6: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
5: ठीक है, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
1: मार्को जी, स्वागत है कॉल उठाने के लिए।
0: जी जी,
1: भाती जी, क्या हाल चल रहा है?
0: हमारा हाल चल रहा ठीक, बराबर बताएं।
1: क्या करें, गर्मी में परेशान बनी आ रही है, पानी से परेशान बन। और घर परिवार में कैसन बा समाचार?
0: जी, घर परिवार में सब क्यों ठीक बा।
1: और सब बताए?
0: और सब तो बढ़िया बा एकदम।
1: लिसनर लोग खाली आवाज सुन ला परेशान रहे लोग। एक बार गाना बटे जननी
0: बताए,
1: गंगा की कसम मैं हूँ बावड़ा, ये क्या कहते हैं, जैकी सर अक्षर सिंह लाया गया है, ये गजरा वाली, ये झुमक वाली, लहना वाली, मैं हूँ बावड़ा, बावला हूँ बावला।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ये गाना अपने के मनोरमा जी के तमाम जितना देशों में सब को डेडिकेट बटे जन नहीं, तो गाना सुनावल जा सर, कभी मौका मिली तो बतिया
0: जी। तो गाना रहा प्ले करता नहीं
1: जी, तो सुनाओ के नमस्कार, मनोरमा जी को नमस्कार, सुनने वाला सब दोस्तों के नमस्कार बटे
0: जी। तो रेडियो रूम जी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आई प्रोग्राम में इंतजार करता नहीं।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: हमार बजरंगी पुलिस बन गई ने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।